ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई 2026। सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से

0: उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वह संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमद्दाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हारकर सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस।

ज्ञान तथा भक्ति में भेद संबंधी गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश होता है, अतः वो स्वभाव से ही अविनाशी चैतन्य तथा निर्मल होता है। किंतु माया बड़ी बलवती होती है और जीव उसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख पाता। वो माया के वशीभूत होकर अपने आप बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि आ जाती है और जीव आवागमन के भंवर में पड़ जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में वो गांठ दिखाई नहीं पड़ती और जो दिखे ही नहीं उसे खोलें कैसे। हरि कृपा से मन में यदि श्रद्धा का आविर्भाव हो तो धर्माचार और आस्तिकता के अवलंबन से निवृत्ति और विश्वास उपजता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, जिसमें स्वर था कविता कृष्णमूर्ति का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य

पेन में जिस रंग की स्याही होगी लिखावट भी उसी रंग की होगी। ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसे विचार होंगे उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

इस भक्ति रचना के साथ ही वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नदिया के पार फिल्म से ये गीत, जिसे गाया था जसपाल सिंह और हेमलता ने। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अखियों की झरोखे से फिल्म से ये गीत, जिसे गाया था हेमलता ने और संगीत से सजाया था रविंद्र ने।

हिमालय की गोद में फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत हमने लिया, जिसे गाया था मुकेश ने, लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आपकी दोस्त जयश्री आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम में कुछ बातें करते हैं और साथ ही आपको सुनवाते हैं सदाबहार आपके दिल को सुकून देने वाले गीत। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं ऐसे ही प्यारे से गीत से, जो हम में से कईयों के, बहुत से लोगों के दिल के करीब होता है।

दोस्तों, सभी कहते हैं कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होने चाहिए जिनसे हम हमारे दिल की सभी बातें शेयर कर सकें। खुशी हो या गम, हम अपने दिल को, अपने मन को उनके साथ साझा कर सकें। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, पर कुछ हम में से ऐसे इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी या यूं कहूं कि रिजर्व नेचर के भी होते हैं, जो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये थोड़े शर्मीले मिजाज के होते हैं, जो अपने मन की बातें दूसरों के सामने बयान नहीं कर पाते। और दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती भी है जो हम दुनिया से नहीं कह पाते। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो भीड़ में भी चुपचाप पलकों के कोनों में ठहर जाते हैं। और तब हम ढूंढते हैं एक ऐसा दोस्त जो हमें रोके नहीं, टोके नहीं, जज ना करें, बस चुपचाप हमारी हर धड़कन सुन ले। गेस करो, वो दोस्त कौन हो सकता है? करो करो।

अकेले हैं तो क्या गम है। जी हाँ श्रोताओं, आज आपको हम एक ऐसे दोस्त से मिलवाने जा रहे हैं जो हमेशा आपके साथ रहें, आपके पास है। वो दोस्त हैं आपकी अपनी डायरी। जी हाँ श्रोताओं, वो साधारण सी दिखने वाली कॉपी जिसके पन्नों में किसी की अधूरी मोहब्बत सांस लेती है, किसी के टूटे सपने दबे होते हैं तो कहीं किसी को छोटी सी खुशी फूल बनकर महकती दिखाई देती है। आज कुछ बातें कुछ गीत के इस अंक में हम खोलेंगे ऐसे ही बन डायरी के पन्ने, जहां शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते बल्कि संजोए जाते हैं। दिल के अरमान, बिखरे सपने, अधूरी मोहब्बतें और वो वादे जो किए तो गए थे पर निभाए नहीं गए।

दोस्तों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाने वाली। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आपको आपसे ही। कभी कभी ना हम सबके अंदर एक आवाज़ होती है जो रोज़ हमसे बात करना चाहती है, पर हम उसे चुप करा देते हैं। लोगों से हंसते हुए मिलते हैं, मैं ठीक हूँ कहते हैं, पर रात को जब सब सो जाते हैं तो वही आवाज़ धीरे से पूछती है, सच में तुम ठीक हो? और तब हम उठाते हैं एक डायरी, एक पेन, और लिख देते हैं वो सब जो हम दुनिया को कभी नहीं बता पाते। दोस्तों, आज का कुछ बातें कुछ गीत उन्हीं अनकही अल्फाजों के नाम है। आज मैं पढ़ूंगी कुछ डायरी के पन्ने, ना नाम होगा ना पहचान होगी, बस होंगे उसमें वे अनुभव जो हमने व्यक्तिगत रूप से फील किए। हमारी मीलों चली यात्राएं होगी और साथ ही साथ ऐसे इमोशन जो कभी किसी के सामने उजागर नहीं हुए, ऐसी शिकायतें जो किसी से कही नहीं गई। जी हाँ दोस्तों, आज खोलेंगे ऐसी ही यादों का पिटारा जो आज सिर्फ हमारी डायरी के पन्नों तक ही सीमित रह गई है, और साथ ही सुनेंगे आप सभी के दिल को भाने वाले प्यारे प्यारे गीत।

दोस्तों, कभी कभी जब आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है तो उनके बारे में लिखने से आपको उन विचारों को पहचानने में मदद मिल सकती है जो आपको तनाव दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं। इससे आप उनमें से प्रत्येक पर काम कर सकते हैं। लिखना किसी से बात करने की तुलना में थोड़ा अधिक टाइम लेने वाला होता है, लेकिन टाइम लगने का मतलब ये नहीं कि वो आपको अपने विचारों को ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने का अवसर देता है और परिणाम स्वरूप लिखने के बाद आप फ्रेश फील करेंगे। वास्तव में ये मेरे जैसे चिंता जैसे ग्रस्त व्यक्ति के लिए तो एक थेरेपी हो सकती है। साथ ही डायरी एक अच्छे दोस्त की तरह होती है जिसे आप कुछ भी बता सकते हैं, सचमुच कुछ भी, बिना किसी डर के या बिना किसी आलोचना के।

दोस्तों, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज हम पढ़ रहे हैं हम सब में से किसी की डायरी। अब ये डायरी किसकी है, किसने लिखी है, कब लिखी है, ये हम आपको नहीं बताएंगे, पर डायरी में क्या लिखा है वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले डायरी हम पढ़ते हैं एक बच्चे की कहानी। July 14, 2024, समय रात के 10 बजे। बच्चे ने लिखा है, प्रिय डायरी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास रहा। सुबह जब स्कूल गया तो हमारी कक्षा में विज्ञान की प्रयोगशाला में एक नया प्रयोग किया गया। मैं पहली बार माइक्रोस्कोप से पौधों की कोशिकाओं को देख पाया। यह अनुभव बहुत ही रोचक और सीखने लायक था। मुझे ये समझ में आया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रयोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोपहर का लंच मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर स्कूल में कर पाया और हमने खूब बातें की। आज मैंने अपने एक पुराने दोस्त को माफ़ किया जिससे मेरी दोस्ती दोबारा हो गई। मन को बहुत शांति मिली। शाम को मम्मी ने मेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए। पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया। ये पल मेरे लिए बहुत कीमती था। आज का दिन मुझे ये सिखा गया कि माफ करने से या कुछ नया सीखने से और परिवार के साथ समय बिताने से ही असली खुशियाँ मिलती है।

दोस्तों, स्कूल के बच्चे की डायरी पढ़ने के बाद अब अगली डायरी होम मेकर की, जिसने लिखा है, प्रिय डायरी, आज सुबह फिर अलार्म से पहले आंख खुल गई। सबके टिफिन बनाए, बच्चों को रेडी किया, सबको हंसते हुए विदा किया, और फिर जब घर में खामोशी हुई तो पता नहीं मैंने सबसे पहले क्या किया। बताती हूँ, मैंने अपने बिखरे हुए बाल समेट लिए और फिर से मुस्कुरा दी। कभी कभी लगता है मैं पूरे घर का दिल हूँ, पर मेरी धड़कन को सुनने वाला कोई नहीं। सबकी पसंद याद रहती है मुझे, कैसे चाय में कितनी चीनी मिलानी है, किसकी आज मीटिंग है, किस बच्चे को किस बात से डर लगता है। बस एक मेरी ही पसंद है जो धीरे धीरे कहीं खो गई। आज अलमारी साफ करते वक्त मेरी पुरानी डायरी मिली, उसमें लिखा था, मुझे गाना बहुत पसंद है, कभी रेडियो पर बोलना है, कभी खुद के लिए भी जीना है। पता नहीं वो लड़की अब कहाँ चली गई, पर डायरी आज एक बात समझ आई, घर संभालते संभालते औरत टूटती नहीं है, वो हर रोज खुद को थोड़ा थोड़ा भूल जाती है।

दोस्तों, घर को घर बनाने वाली महिला सिर्फ काम नहीं करती, वो अपनी पूरी जिंदगी उस घर में चुपचाप बुन देती है।

दोस्तों, आज मैं अगली डायरी पढ़ रही हूँ एक मुसाफिर की, जिसने लिखा है, प्रिय डायरी, आज पहाड़ों के बीच बैठकर पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी कितनी तेज भाग रही है। यहाँ ना कोई शोर था, ना कोई दिखावा, बस हवा थी, बादल थे और मैं था। शायद सफ़र जगहों से ज़्यादा इंसान को बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ तस्वीरें लेकर लौटते हैं और कुछ लोग सफ़र से कहानियाँ लेकर आते हैं। एक ट्रैवलर अपनी डायरी में सिर्फ रास्ते नहीं लिखते, उसमें किसी पहाड़ की ठंडी हवा, किसी स्टेशन की हलचल, बारिश में भीगी सड़कें और किसी अनजान शहर में मिली छोटी सी मुस्कान भी दर्ज होती है। उस मुस्कान को भी वो अपनी डायरी में लिखते हैं। कभी कभी सफर हमें वहां नहीं ले जाता जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाता है जहां हमें खुद को समझना होता है।

दोस्तों, चलते जाना है। ये बात कितनी सच है कि समय रुकता नहीं है, बढ़ता रहता है। हमें भी इसी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। हम डायरी के पन्ने तो खूब सुनवाना चाहते थे आपसे, पर समय के अभाव के कारण हम लास्ट में एक ऐसी बात कहना चाह

मैं आपसे जो डायरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इतिहास में कई प्रसिद्ध डायरियाँ लिखी गई, लेकिन सबसे अच्छी डायरी का खिताब आम तौर पर एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी को दिया जाता है, जिसे द डायरी ऑफ द यंग गर्ल नाम से जाना जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे में छिपकर रह रही एक 13 साल की यहूदी लड़की की कहानी है। इसमें एक बच्ची के मासूमियत से भरे अनुभव, डर, सपनों और युद्ध की विभीषिका के बीच जीने की इच्छा को बहुत ईमानदारी से दिखाया है। इसमें उसने लिखा है, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत अनुचित है, फिर भी मैं खुद को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो जाएगा और शांति फिर से लौट आएगी।

0: तो दोस्तों, आज घर जाइए और अपनी जिंदगी के लिए बस दो पन्ने लिखिए। जरूरी नहीं कि शब्द बहुत खूबसूरत हो, बस एहसास सच्चे होने चाहिए, क्योंकि एक दिन जब वक्त बहुत आगे निकल जाएगा तब यही डायरी के पन्ने आपको आपसे मिलवाएंगे।
1: यारा रब से पहले है तू।
0: खूबसूरत एहसास के साथ मैं ले रही हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे कुछ बातें कुछ गीत में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब पहले आप सुनेंगे हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से

0: एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वामदलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष में SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलेश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकंगवा, मेईते ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नम्बर है 0112301 0112317117 और 0112317106। व्हाट्सएप नंबर 9289

0: 4044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis. Prime Minister Modi to participate in Somnath Amrit Parv in Gujarat today to also inaugurate Sardar Dham Hostel in Vadodara. Assam Governor invites Hemant Biswa Sarma to form new government in the state. Uttarakhand administration urges Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain alert and travel safely amid adverse weather conditions. US President Donald Trump rejects Iranian response to US peace proposal as totally unacceptable. And in football, India to take on host China in crucial quarterfinal match in AFC Under 17 Women's Asian Cup in Suzhou today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a gathering in Hyderabad, Mr. Modi called for revival of work from home practices. The remarks come against the backdrop of record

0: सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन।
1: श्रोताओं, अगर सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला अगर आपके दिल में है तो हर शुरुआत खास बन जाती है। इसी खास शुरुआत के साथ आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार।

0: दोस्तों हर सुबह अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आती है, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: सुबह की हल्की ठंडी हवा,
0: सूरज की पहली किरण
1: और पक्षियों की मीठी आवाज,
0: ये सब मिलकर जैसे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जिंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है। मौका खुद को बेहतर बनाने का, मौका कुछ नया सीखने का और मौका अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का। तो क्यों ना इस सुबह की शुरुआत करें एक मुस्कान के साथ, थोड़ी सी उम्मीद के साथ और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं उन खास लोगों से जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं और भी यादगार बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
1: जी दोस्तों, आइए आज के हमारे नमस्कार की टीम से करवाते हैं आपको रूबरू। ट्रांसमीटर्स पर हैं चंद्रा राम पटेल और नरेंद्र सिंह राठौर। कंट्रोल रूम से हमारा साथ दे रहे हैं इंजीनियर सुनील जयपाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजय व्यास की और संयोजन राजेश लामरोल का। हमारे साथ है ऑन ड्यूटी अनाउंसर जयश्री और एफएम का कंसोल संभाल रही है अनाउंसर आकांक्षा वैष्णव। और इस पूरी रचनात्मक टीम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमलता और मेरे साथ हैं
0: हिमांशु अवस्थी।
1: तो दोस्तों आज के नमस्कार कार्यक्रम में आपके साथ साझा करेंगे कई सारी जानकारियां, कई सारे महत्वपूर्ण दिन विशेष की बातें और भी बहुत कुछ आपके साथ हम साझा करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम नमस्कार में। मगर उससे पहले नए दिन की नई शुरुआत नए नवेले गीतों के साथ, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, ये जो हमारा जीवन है, हमारा ये जो जीवन व्रत है, इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ज़िंदगी के कुछ साल जो हैं वो इतने यादगार होते हैं, इतने अविस्मरणीय होते हैं कि पूरी ज़िंदगी हम चाहे कुछ भी भूल जाएं मगर उनको नहीं भूल पाते। और ऐसे ही कुछ साल या कुछ समय कह लूँ होता है हमारे कॉलेज का दौर, जब हम अपना टाइम अपने उन मनपसंद दोस्तों के साथ भी बिताते हैं, क्योंकि उस वक्त हम थोड़े समझदार भी हो जाते हैं, हमें हर चीज़ समझ में आने लगती है और हम उन मूल्यों को समझने लगते हैं जो हमारी ज़िंदगी में ख़ास महत्व रखते हैं। और उसी में ये कॉलेज के दिन हमारे बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास बन जाते हैं, उनकी जो यादें हैं वो ज़िंदगी भर हम संजोए रखते हैं।
1: मस्ती, दोस्ती और सपनों और ढेर सारी यादों से भरी दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नमस्कार, जहां बात होगी यूथ लाइफ की, उन दोस्तों की जो फैमिली जैसे बन जाते हैं, उन सपनों की जो आंखों में बसते हैं, और उन गानों की जो हर कॉलेज की यादों का एक हिस्सा बन जाते हैं। और अगले 30 मिनट तक हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ की, उन यादों के एक शानदार सफर की।

0: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कॉलेज के उन खास पलों की जो आपकी यादों का हिस्सा बन गए हैं। श्रोताओं, कॉलेज की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई होती है तो वो होती है दोस्ती। वो कैंटीन की बातें, लास्ट बेंच वाली हंसी, नोट शेयर करना और एग्ज़ाम से ठीक एक रात पहले कहना, भाई कल बचा लेना। कॉलेज ख़त्म हो जाता है लेकिन दोस्ती की यादें हमेशा साथ रहती हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, कॉलेज लाइफ के वो दिन जब क्लास से ज़्यादा इंतज़ार कैंटीन की घंटी का होता था, दोस्तों के साथ चाय की एक प्याली से पूरी दुनिया बसती थी, नोट्स कम और यादें ज़्यादा बनाई जाती थी उस दौर में, और आज भी वो हंसी, वो शोर, वो बेफिक्र पल दिल के किसी कोने में जिंदा है ना।

0: जी हाँ दोस्तों, पुरानी यादों में जो चीज़ें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहती हैं। और कॉलेज के दिन सिर्फ पढ़ाई के ही नहीं होते, वो सपनों की पहली उड़ान होती हैं, जहाँ दोस्त परिवार बन जाते हैं और हर गलियारा एक कहानी कहता है। वो दिन बीत जाते हैं मगर उनकी खुशबू जो है वो उम्र भर हमारे साथ, वो सुरभि हमें महकाती रहती है।
1: दोस्तों, हर स्टूडेंट्स की कहानी के कुछ सपने होते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई सिंगर। हर कोई अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। कॉलेज सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता बल्कि ज़िंदगी को समझना सिखाता है। फेलियर्स आते हैं, कंफ्यूजन होता है, लेकिन यही स्ट्रगल आगे जाकर आपके सफलता की कहानी बनता है।

0: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। कॉलेज के उन राजदारों के साथ लाइफ बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, जहाँ बिना वजह हंसना, बिना सोचे घूमना, बिना थके सपने देखना। वो दिन सिखा गए कि जिंदगी किताबों में नहीं, लोगों से भी सीखी जा सकती है।
1: दोस्तों, कॉलेज की बात और प्यार मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। किसी का पहली बार किसी को देखकर स्माइल करना, लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा टाइम बिताना, या बस सामने वाले को देखने के लिए अपनी अटेंडेंस को पूरी रखना। कुछ स्टोरीज पूरी तो हो जाती हैं और कुछ सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं।

तो चलिए श्रोताओं, रुख करते हैं समाचारों की ओर। समाचारों के बाद हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एक बार फिर होगा आपके साथ इसी ऊर्जा और मुस्कान के साथ। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज। प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री मोदी कल हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे

0: विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल ही के सालों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में भाग लेंगे। इसका आयोजन पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सोमनाथ महादेव की पूजा और अभिषेक करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री का रोड शो भी रखा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ अभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। देवस्थान विभाग के आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में रखा गया है। इस दौरान महाआरती होगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शर्मा कल अजमेर जिले के पुष्कर के कडेल गांव में ग्राम विकास चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर शौचालय निर्माण, हर घर नल से जल, जनधन खातों और उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं का जीवन बदला है।
2: युवा, किसान, महिला, मजदूर, अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उठता है, गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। और इसीलिए हमारी योजना है वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है और इन्हीं को लेकर के हम चलते। पहले गांव में जाते थे तो पहले तो लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, कोई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी काटते थे, उससे खाना बनता था। खाना कई परिवारों में आज भी बनता है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बारिश के समय में उससे और परेशानी होती, ईंधन गीला हो जाता था, भूख देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था। लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: ग्राम विकास चौपाल में श्री शर्मा ने किसानों और युवाओं से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री ने आज सुबह कडेल गांव में पैदल भ्रमण कर बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी नहर में कल से बंदी समाप्त हो गई। बीती रात 12 बजे के बाद से अधिकारियों ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के पास पानी प्रवाहित करने का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के कारण पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामकिशन ने बताया कि फिलहाल 10 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बंदी खत्म होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और पानी की समुचित आपूर्ति हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में प्रचंड लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाड़मेर में पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
3: सवेरे से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे हो जाते हैं। भीषण गर्मी के चलते स्वर्ण नगरी के पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम जन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है।

0: गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं भीषण गर्मी के मौसम में मूक पक्षियों के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: जोधपुर और बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। प्रदेश के 19 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी हीट वेव की प्रबल संभावना है। वहीं रातें भी काफी गर्म रहेंगी। साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं आंधी और हल्की बरसात हो सकती है। उधर हनुमानगढ़ जिले में पिछले 3-4 दिनों से जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज सुबह मौसम अचानक बदला और कई स्थानों पर झमाझम पानी बरसा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलता से बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने रेलगाड़ियों में मिडिल बर्थ के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मिडिल बर्थ खोलने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे नियमों के तहत सुबह 6 बजे बाद बीच की बर्थ फोल्ड करना अनिवार्य है, जिससे निचली बर्थ पर यात्री आसानी से बैठ सकें। उन्होंने बताया कि अपर बर्थ के यात्री पूरे दिन बर्थ का उपयोग कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: समाचारों के बाद एक बार पुनः हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम नमस्कार में। दोस्तों, आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार आज आपके बीच लेकर हाजिर हैं हम आपके दो दोस्त। मैं हूं हेमलता और मेरे साथ हैं
4: हिमांशु अवस्थी। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ इसी खूबसूरत सुबह को और भी खास बनाने के लिए। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं कुछ नए ख्यालों, नई बातों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ।

श्रोताओं हर दिन अपने साथ कुछ नई यादें, कुछ नई कहानियां और इतिहास के कुछ सुनहरे पन्ने लेकर आता है। आज की तारीख है 11 मई और आज की तारीख भी ऐसी घटनाओं की गवाह रही है जिन्होंने देश, दुनिया और समाज को एक नई दिशा दी है। तो आइए चलते हैं इतिहास के उसी सफर पर और जानते हैं 11 मई से जुड़ी कुछ खास बातें। ग्यारह मई 1752 अमेरिका

0: अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में पहली बार अग्नि बीमा यानी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। इस पहल को शुरू करने वालों में महान वैज्ञानिक और राजनेता बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। ये कदम लोगों की सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण की दिशा में एक बड़ी शुरुआत माना गया।
1: '51 में आज ही के दिन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने नव निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था।
0: 11 मई 1940, ये दिन भारतीय प्रसारण जगत के लिए बेहद खास रहा। इसी दिन बीबीसी ओवरसीज सर्विस ने हिंदी भाषा में अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद हिंदी भाषा दुनिया की आवाज बन गई और कई देशों तक पहुंची।
1: 11 मई 1962 का वो दिन था जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया था।
0: 11 मई 1998, इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोकरण रेगिस्तान में 5 सफल परमाणु परीक्षण किए थे। इन परीक्षणों को पोकरण 2 या ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है।
1: 2000 में 11 मई का ही वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत की आबादी ने 1 अरब का आंकड़ा पार किया। नई दिल्ली में जन्मी एक बच्ची आस्था को देश का 1 अरबवां नागरिक होने का करार दिया गया। '08 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क के कार्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया।
0: 11 मई सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि विज्ञान, संस्कृति, प्रसारण, नेतृत्व और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी कई प्रेरणादायक घटनाओं का प्रतीक है। इतिहास हमें सिर्फ बीते समय की जानकारी नहीं देता बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है।

0: दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस देश की तकनीक मजबूत होती है उसका भविष्य भी उतना ही मजबूत होता है।
1: जी हाँ दोस्तों, 11 मई का दिन भारत के इतिहास में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।
0: दोस्तों, आज का दौर विज्ञान और तकनीक का दौर है। मोबाइल से लेकर मिसाइल तक, इंटरनेट से लेकर अंतरिक्ष तक, हर क्षेत्र में तकनीक ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। और जब बात भारत की हो तो हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दुनिया को बार बार ये साबित किया है कि भारत किसी से कम नहीं।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज ही का वो दिन था 11 मई का 1998 को भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल हम मनाते हैं 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। यह दिवस पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था।
0: श्रोताओं, इन्हीं परीक्षणों के साथ भारत दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को भारत की वैज्ञानिक क्षमता का परिचय कराया। बाद में उन्होंने ही 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। लेकिन श्रोताओं, 11 मई 1998 सिर्फ परमाणु परीक्षणों के लिए नहीं खास है। इस दिन भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 ने सफल उड़ान भरी थी। साथ ही भारत की स्वदेशी त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था।
1: और इस पूरे कार्यक्रम का जो नेतृत्व किया था हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। यह देश और इस दिन का जो है वो बहुत गहरा नाता है दोस्तों। यह दिन हमारी ताकत, कमजोरियों, लक्ष्य के विचार मंथन के लिए मनाया जाता है, जिससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें देश की दशा और दिशा का सही ज्ञान हो सके। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें याद दिलाता है कि तकनीक सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य को बेहतर, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 में जिम्मेदार नवाचार और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, जो इस बात को दर्शाता है कि AI, अंतरिक्ष विज्ञान और डिजिटल उपकरणों जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी समाज के सभी वर्गों को कैसे लाभ पहुंचा सकती है।

0: दोस्तों आज है सोमवार और सोमवार के दिन हमारा विशेष सेगमेंट होता है विज्ञान विश्व। विज्ञान विश्व में आज हम आपको सुनाने वाले हैं अलजेब्रा की कहानी। अलजेब्रा जिसे हिंदी में बीजगणित कहा जाता है, गणित की वह शाखा जिसमें अज्ञात संख्याओं और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आज यह विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और दैनिक जीवन तक में उपयोग होती है, लेकिन इसकी शुरुआत हजारों वर्ष पहले हुई थी।
1: श्रोताओं, बीजगणित गणित की वो विधा है जिसमें केवल संख्याएं ही नहीं बल्कि अक्षरों और प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे एक्स, वाई, जेड। इनका इस्तेमाल उन मानों के लिए किया जाता है जिन्हें हम खोज निकालना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं एक्स में 5 जोड़ने पर 10 आता है तो यहां एक्स क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा 5। यानी बीजगणित हमें अज्ञात चीजों को समझने और हल करने का तरीका सिखाता है। अब जरा इसकी कहानी पर चलते हैं। श्रोताओं, बीजगणित की शुरुआत आज से हजारों साल पहले मानी जाती है। करीब 2000 ईसा पूर्व बेबीलोनियन सभ्यता के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर गणितीय

0: समस्याएं हल किया करते थे, वे ऐसी संख्याएं खोजने की कोशिश करते थे जो सीधे दिखाई तो नहीं देती थीं। यहीं से बीजगणित की नींव पड़ी।
1: जी हाँ, और प्राचीन काल में लोग व्यापार, खेती और जमीन के बंटवारे के लिए गणनाएं करते थे और ये सारी ही इन समीकरणों से हल की जाती थी। हालांकि उस समय अलजेब्रा शब्द प्रचलित नहीं था। अलजेब्रा शब्द जो है वो अरबी भाषा के शब्द अल जबर से आया है और यह नाम महान गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी के पुस्तक से लिया गया है।
0: दोस्तों, भारत का योगदान भी इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता ने शून्य और दशमलव प्रणाली को विकसित कर गणित को एक नई दिशा दी। उन्होंने ऐसे तरीकों का विकास किया जिनसे कठिन बीजीय समीकरण को हल करना आसान होता है।
1: अलजेब्रा केवल संख्याओं का खेल नहीं बल्कि सोचने और समस्याओं को समझने की कला भी है। यह हमें तर्क करना, पैटर्न पहचानना और सही समाधान तक पहुंचना सिखाती है। इस प्रकार अलजेब्रा की जो कहानी है वो मानव बुद्धि, खोज और ज्ञान की निरंतर यात्रा की कहानी है जिसने दुनिया को गणना का एक नया दृष्टिकोण दिया।
0: दोस्तों, समय के साथ बीजगणित और विकसित होता चला गया। 13वीं शताब्दी में फिबोनाची ने यूरोप में बीजगणित की तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। फिर 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गणितज्ञ रेने डेस्कार्ट्स ने एक्स, वाई और जेड जैसे अक्षरों का उपयोग अज्ञात राशियों के लिए शुरू किया। आज भी स्कूलों और कॉलेजों में हम इन्हीं प्रतीकों का उपयोग करते हैं। श्रोताओं, आज के समय में बीजगणित सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। जब इंजीनियर पुल बनाते हैं, जब वैज्ञानिक नए प्रयोग करते हैं, जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हैं, तब हर जगह कहीं ना कहीं बीजगणित काम आती है।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

0: दोस्तों वक्त है काम की बात को जानने का। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी के पास समय कम है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई याद करनी होती है, ऑफिस में काम करने वालों को जरूरी बातें याद रखनी होती हैं, और कई बार हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन थोड़ी देर बाद सब भूल जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि कम समय में चीजें जल्दी याद हों और लंबे समय तक दिमाग में बनी रहें। इसलिए आज काम की बात में हम लेकर आए हैं कम समय में याद करने के कुछ आसान और असरदार ट्रिक्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली ट्रिक की ओर। समझ कर पढ़िए और रटिए मत। जब भी कुछ पढ़ें उसका मतलब समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज हम समझ लेते हैं उसे दिमाग में ज्यादा समय तक याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ रटने की जल्दबाजी ना करें।
1: जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उनको अगर हम टुकड़ों में बांट कर करें तो वो काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और उसी तरह से जब हम पढ़ने बैठते हैं या कोई ऐसी चीज है जिसे हमें याद करना है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में हम अगर बांट लेते हैं तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। और छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर अगर पढ़ाई को किया जाए तो पूरी किताब एक साथ पढ़ने की बजाय उसे छोटे भागों में करने से 25-30 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का अगर हम छोटा ब्रेक लेते हैं तो हमारा दिमाग थकता नहीं है, याददाश्त हमारी जो है वो बेहतर होती है।
0: श्रोताओं, एक लिख कर याद करने की कोशिश करें। कई रिसर्चों में पाया गया है कि लिखने से चीजें ज्यादा अच्छी तरह से याद रहती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कॉपी में नोट जरूर करें।
1: कहा जाता है कि जोर से बोलकर अगर पढ़ा जाता है तो वो लंबे समय तक हमें याद रहता है। जब हम पढ़ते समय सुनते भी हैं तो दिमाग दो तरीकों से जानकारी को पकड़ता है, इससे याद करने की क्षमता बढ़ती है।
0: श्रोताओं, मेनोमिक्स ट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंद्रधनुष के रंग याद रखने के लिए कई लोग छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं, इसी तरह कठिन चीजों को आसान शब्दों या कहानियों से जोड़कर याद किया जा सकता है।
1: और कहते हैं कि हमारा ये जो दिमाग है इसको भी आराम की जरूरत होती है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो याद की हुई जो चीजें हैं वो जल्दी भूली जा सकती हैं। इसलिए अच्छी नींद भी पढ़ाई के लिए उतनी ही जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहकर पढ़ाई की जाए, यानी कि जब पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई के मन से ही पढ़ाई की जाए। उस वक्त इन डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों से थोड़ी सी दूरी बना ली जाए। बार बार नोटिफिकेशन आने से हमारा ध्यान भटकता है और दिमाग की जो एकाग्रता है वो भी टूटती है। तो दोस्तों, याद रखने का कोई जादू नहीं होता है, बस यही तरीका और नियमित अभ्यास जरूरी होता है।
0: अगर हम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें तो कम समय में भी बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं खेल खबरों की ओर। चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज उर्वेल पटेल ने महज 13 गेंदों में संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने 23 गेंदों में 8 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 65 रनों की पारी खेली। उर्वेल के इस आक्रामक

0: पारी से चेन्नई ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से मात देकर छठी जीत दर्ज की। दोस्तों, आपको लिए चलते हैं इटालियन ओपन की तरफ, जहां वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन के अभियान का शानदार आगाज किया। इटली के सिनर ने ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन ऑफनर को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है।
1: फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी ने मेजर लीग सॉकर में सबसे तेज 100 गोल योगदान देने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
0: अब बात चेस की। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को ग्रैंड चेस टूर के सुपर रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में छठे स्थान से संतोष करना पड़ा।
1: भारतीय वेटलिफ्टर सोमवार से शुरू हो रही एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये गांधीनगर में आज से शुरू होने वाली है। भारत ने 16 सदस्यीय मजबूत दल इसमें अपना उतारा है, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के 8-8 खिलाड़ी भाग लेंगे। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू इसमें भाग नहीं ले रही हैं। टूर्नामेंट में लगभग 30 देशों के 170 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं।

0: श्रोताओं, बात उनकी जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया था। मेरी जिंदगी एक दीवार है जिसका पलस्तर मैं नाखूनों से खुरचता रहता हूँ। कभी चाहता हूँ इसकी तमाम ईंटें परांगदा कर दूँ, कभी ये जी में आता है इस मलबे के ढेर पर एक नई इमारत खड़ी कर दूँ। मंटो, आज 11 मई के अवसर पर हम याद करें उर्दू साहित्य के उस बेबाक और महान लेखक को जिसने समाज की सच्चाइयों को बिना किसी डर और बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने रखा, सआदत हसन मंटो। मंटो का जन्म 11 मई 1912 को पंजाब के समराला कस्बे में कश्मीरी परिवार में हुआ था। उनका जीवन छोटा जरूर रहा, लेकिन उनकी लेखनी साहित्य की दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ गई। लगभग 20 सालों के साहित्यिक सफर में उन्होंने 270 से ज्यादा अफसाने और कई रेडियो नाटक और फिल्मी कहानियां और संवाद लिखे। मंटो ने समाज के उन चेहरों और सच्चाइयों को अपनी कहानियों में जगह दी जिनसे लोग अक्सर नजरें चुरा लेते थे। उनका मानना था कि लेखक का काम समाज को आईना दिखाना होता है।
1: साथ ही हम आज याद कर रहे हैं मृणालिनी साराभाई, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना, जो जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य के अलावा साराभाई एक कवयित्री, लेखक और पर्यावरणविद भी रहीं। उन्होंने 300 से ज्यादा नृत्य प्रस्तुतियों को मंच पर कोरियोग्राफ किया। उनकी नृत्य प्रस्तुति के दौरान अक्सर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मौजूद रहते थे, ऐसा कहा जाता है। मृणालिनी साराभाई का जन्म केरल में 11 मई 1918 को हुआ। उनके पिता डॉ. स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट में बैरिस्टर थे और माँ अम्मू स्वामीनाथन स्वतंत्रता सेनानी, जो बाद में देश की पहली संसद की सदस्य भी बनी। उनकी बहन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के साथ रही और मृणालिनी के बचपन का अधिकांश समय जो है वो स्विट्जरलैंड में ही बीता। यहां उन्होंने डेलक्रूज स्कूल से पश्चिमी तकनीक में नृत्य सीखा। वह भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम की मशहूर नृत्यांगना, नृत्य निर्देशक और प्रशिक्षक थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1965 में पद्मश्री और वर्ष 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका शीर्षक मृणालिनी साराभाई द वॉइस ऑफ द हार्ट है और वे देश के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की धर्मपत्नी थीं।

0: दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम आपसे लें इस कार्यक्रम से विदा, और अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं हेमलता और हिमांशु
1: मुझे यानी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं विविध लोक कलाकारों को कार्यक्रम लोक संगीत में। लोक संगीत में आगाज किया है हमने कालूराम प्रजापति की इस रचना से।

विजय लक्ष्मी गोयल की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम लोक संगीत में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं चंपा मेथी और पार्टी की आवाज़ में ये लोक रचना।

जमात खान की इस रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्स पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में ये पहली रचना रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में।

श्रोताओं, सुगम संगीत में अभी आपने सुना रूप कुमार राठौड़ की रचना को। आइए अब आपको सुगम संगीत की आखिरी रचना सुनवाते हैं, गुलाम अली साहब की।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत हम सुनेंगे कल आज और कल मूवी से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। आइए सुने ये गीत।

इस गीत में किशोर कुमार का साथ दिया है आशा भोसले और मुकेश ने, बोल है नीरज के और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम है कल आज और कल।

ये गीत हमने सुना किशोर कुमार, आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ में, बोल थे नीरज के और संगीत था शंकर जयकिशन का। आइए सुने अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल है इंदिवर के और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम है पतंगा।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। हमारा विशेष प्रसारण दिल्ली केंद्र से, आइए सुनें।

0: यह आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्लयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं ग्रीष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important, the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable

0: Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
1: Namaskar. आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहां विशेष तीर्थ होते हैं वहां पे सहस्त्र घट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
2: जी।
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
2: जी।
0: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth.

0: which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May, marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first president of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had, at the beginning of this year, had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parva, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का क्योंकि आस्था का प्रतीक है चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये जो एकता का प्रतीक भी है अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है हमारे इतिहास का हिस्सा है हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को और यहां पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है पुष्प सज्जा की गई है शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं डमरू की आकृति नंदी जी की आकृति त्रिशूल यहां पर पुष्पों से बनाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहां पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था भव्य आयोजन था उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है
0: Yes, you are absolutely right, Neelam. And as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च

0: विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहाँ भी कोई मंदिर होगा वहाँ त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका

0: मूल प्रभाव का जो हमें कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है। इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे। इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यावस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायुसेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: यस, एंड एज वी मार्क द 75 इयर्स ऑफ द कंसेक्रेशन ऑफ द रीबिल्ट सोमनाथ टेंपल बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुडे, एज माय कॉलीग नीलम मेंशन, विल रिलीज अ स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप एंड अ कॉइन ऑफ रूपीज 75 डिनोमिनेशन। As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy. Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है। सोमनाथ मंदिर हमारे समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए, आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है। इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: नीलम, द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स, द एरोबैटिक टीम, द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT, the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे, तो एकानंद भगवान विष्णु, चतुरानंद भगवान ब्रह्मा और पंचानंद भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंड से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव है। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिसपे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव है। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन

0: किया है और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहां पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th of May 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधा रहें और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और

0: Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department, IMD, amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today. Amid weak global cues, the Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान हैं अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉ आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़कर आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
2: तो यदि

0: देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना, एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु है। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसेद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उसे नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वलोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन बात, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं, इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आए और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लांघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी,
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी,
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जा हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जा अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी,
0: अब जब

0: शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए। पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार की शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की। तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए। तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में। तो यहाँ आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस। सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया। तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतमतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आप मयोभवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें। भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has offered prayers at the Shri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: And the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honourable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honourable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honourable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहां पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहां पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर कि मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहनाकर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
0: प्रधानमंत्री government, Shri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honourable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honourable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honourable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honourable Prime Minister himself is the President of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honourable Prime Minister by the organisers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honourable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशल जी, मैं यहां यह भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्तिभाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे, और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं, और यहां पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य, और अब स्वागत उद्बोधन यहां पर
2: विश्वनाथ चौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ, सांसद श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीश्रीओ श्री जेडी परमार, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया मित्रों।

0: 5th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath. And on the heads, there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव. माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक. प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने. और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में.
0: द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल नाउ एड्रेस द गैदरिंग.

गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम, आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य

भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ ही प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके, और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत

बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं।

साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के

मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है।

कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में

0: 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: वी Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति प्वाइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉ आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: अभी आप
4: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आप सुनेंगे हिन्दी में प्रादेशिक समाचार।

0: जाहिर है। दिन के 1:15 होने वाले हैं। ठीक 1:15 से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इसके बाद श्री मोदी ने सोमनाथ पर डाक टिकट जारी कर जनसभा को संबोधित किया। इधर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है। देशवासी एकजुट होकर संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं।
2: हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर खाटू श्याम जी नाथद्वारा केशोराय पाटन गिरिराज जी चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीर्णोद्वार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर खाटू श्याम जी देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं।
1: प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं।

पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकजुटता से काम करने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के इस्तेमाल को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक साल के लिए विदेश भ्रमण टालने का भी आग्रह किया है। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने और अत्यधिक सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने की बात कही। साथ ही लोगों से खाने के तेल के उपभोग में कमी लाने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग की बात कही। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए स्थानीय वस्तुओं की खरीददारी पर जोर दिया। डीग जिले के जटेरी से अब आदि बद्री, खो, बरसाना और मथुरा को जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कल डीग के जटेरी गांव में आयोजित संध्या चौपाल में शिरकत की। उन्होंने ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि जटेरी को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री बेढम ने कहा कि गांव से जुड़ा नया धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित होने से आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जटेरी और पुंजरी में कुंडों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कोटा के मेडिकल कॉलेज और जेकी लोन अस्पताल में प्रसूताओं की स्थिति पर दोनों अस्पतालों में गंभीर संक्रमण और स्वास्थ्य जटिलताओं के 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डॉ. नीलेश जैन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी इन मामलों को हाई रिस्क वाला बता रही है। अब तक दोनों अस्पताल

0: अस्पतालों में चार प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है। वहीं चार अन्य प्रसूताएं किडनी खराब होने की समस्या से जूझ रही हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सरिस्का में वन्य जीव अस्पताल और जांच केंद्र को मंजूरी दे दी है। इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों का उपचार अब सरिस्का में ही हो सकेगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जल्दी ही अस्पताल का काम शुरू किया जाएगा। अभ्यारण्य में बाघ बघेरों के अलावा सांभर और चीतल सहित करीब 20,000 वन्य जीव हैं। इनके बीमार और जख्मी होने की स्थिति में इन्हें स्थानीय स्तर पर भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल और FM सनसिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है ग्रामीण महिला श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गणगौर।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से गणगौर। गर्मी तपती दोपहरी में जब ठंडी हवा से राहत नहीं मिले तो विंड समय एक गिलास देसी शरबत पीने रो मन करे करे। शरबत जी को है तन और मन में ताजगी भर दिया करे। खसरी खुशबू हो या गुलाबरी मिठास, आम रे पन्ने रो चटपटो स्वाद या बेल रे शरबत री ठंडक, अपना पारंपरिक पेय पदार्थ सिर्फ स्वाद ही नहीं है बल्कि अपने भारतीय रसोई री खूबसूरत विरासत भी है। तो आज इन ठंडी मीठी दुनिया री सैर कराने वास्ते अपारे सागे मौजूद है जानी मानी फूड ब्लॉगर मीनाक्षी बोराना जी। आकाशवाणी जोधपुर गणगौर में आप रो घने मानसु स्वागत है मीनाक्षी जी।
1: सबसे पहले आपका और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कुल आप रो भी घने मानसु स्वागत है। तो शुरू करा ई गर्मिया री खास शरबत री दुनिया री शुरुआत।

0: तो मीनाक्षी जी, आप सोशल मीडिया पर खूब सारा के मैंने पकवान रा वीडियो जी का है, मैं लोग लगातार देखा और
1: जी
0: बहुत ही सुंदर है और बहुत कुछ सीखने भी मिले। पर अबार चाल जो है गर्मी रो मौसम, तो इन गर्मी रे मौसम में जिका अपना पेय पदार्थ जिका हुए अभी आप बनाओ, तो इयरी जी की यात्रा है वह किया शुरू हुई।
1: मेरा ये सफ़र घर की रसोई से ही शुरू हुआ है। स्पेशली मैं दादाजी को बहुत देखती थी शरबत बनाते हुए, और वो शॉप के बाहर गर्मियों के मौसम में जैसे आम पन्ना के स्टॉल्स भी लगाते थे, तो ये सारी चीज़ें मैं देखती थी। और मुझे ऑब्जर्व करना बहुत वो था कि हर चीज़ देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, ट्राई करती थी। तो ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा इसमें रुझान हो गया, और उससे भी ज़्यादा कि घर के बने हुए ये जो पेय पदार्थ होते हैं, ये सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी खजाना है हमारा।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे लगा कि
0: कि क्यों ना यहाँ ही एक रोचक कंटेंट है जिसको आप क्रिएट करें।
1: बना सकते हैं
0: बिल्कुल,
1: और
0: आप जगह
1: सबको।
0: कंटेंट है बहुत ही अच्छा हो या करें।
1: और कंटेंट की बात करा तो आपके हिसाब से गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला देसी शरबत कौन सा है?
0: गर्मियों में सबू ज़्यादा पसंद, आई थिंक आम पन्ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आम पन्ना में विटामिन सी और भी हाइड्रेशन, स्किन हाइड्रेट होती है आम पन्ना से, विटामिन सी मिलता है, डिहाइड्रेशन से बचते हैं, तो आम पन्ना बहुत ज़्यादा सही है और बहुत ज़्यादा पीते भी हैं लोग गर्मियों में। आई
1: यू
0: थिंक
1: भी गर्मियों में आम बहुत ज़्यादा आवे और सबारो पसंदीदा फल है
0: पसंदीदा।
1: जी को आम ही है।
0: अभी आप बात करें कि देसी शरबत सिर्फ स्वाद रहे ही नहीं है बल्कि शरीर ने भी ठंडे है जो दिया करे, और एक बहुत प्राकृतिक तरीको है शरीर ने ठंडक देने री। तो आजकल लोग जिका है बाजार में मिलन वाला जगह पेय पदार्थ है खरीदना जिको है बहुत कम चावे, फिर भी है जिका कुछ व्यक्ति है जिका आप खरीद भी ला, क्योंकि कई बार अपन समय नहीं है, आप घर पे बनाने वास्ते आप 500 सुविधा नहीं, काम काजी महिलाएं या और भी कई कारण हो सके। तो आज अपन बात करें घर में शरबत किया तैयार करा, तो घर का शरबत जिकावे आपने कहीं लगे कि कितना सेहतमंद हुए और हमें ऐसी कई खास बात हो या करे।
1: घर में बनी चीज़ पहले तो ऐसे ही खास हो जाती है क्योंकि बहुत प्यार से बनती है, और दूसरी बात, हम जो भी इसमें चीज़ें लेते हैं वो यूज़ करते हैं वो शुद्धता से भरी होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, नेचुरल होती हैं, प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, तो वो ऐसे ही बहुत खास हो जाती है घर में बनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में बनी ही चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। इवन शरबत, मार्केट के शरबत फूड कलर से भरपूर होते हैं और भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव के बिना नहीं बनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि घर पे ही बनाएं शरबत, तो ज्यादा बेटर है।
0: और एक क्या करें, वो मारे हाथ से स्वाद होया करे, वो अलग ही टेस्ट दिया करे। तो अगला सवाल है कि अगर आपने एक ऐडो शरबत चुनना हो जो स्वाद और सेहत दोनों मायने बेहतरीन हो, तो आप कौन सा शरबत चुनो लो और क्यों?
1: अगर मुझे कोई शरबत चुनना ही होगा तो मैं इमली का चुनूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो लू से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है गर्मियों में, लू से हमें बचाता है, और बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, साथ ही बहुत सारे फायदे भी हैं इसके।
0: बिल्कुल सही बात, क्योंकि इमली जो खट्टोपन है वो बड़ा ही के मैंने स्वाद तो हुई है सेहत से भी भरपूर हुए, और ये गर्मिया में जब अपने लू लागे तो इमली रो शरबत जो है आप अक्सर पिया ही करा, और बच्चा ने जो मैंने खटी खटी इमली रो स्वाद जो है बड़ो ही चोखो लागे, और
1: पहले
0: बच्चा ने
1: आपने
0: क्यों
1: था अपन दादी नानी एक कुल्हड़ रे मायने भिगोड़ी राखती इमली और गुबरो पानी।

0: जब भी अपा स्कूल आता तो वो इमली रो पानी निचोड़ निकालना पान पिलाती ठंडो ठंडो।
1: कूलर में भिगोने से उसका स्वाद भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और उसकी गुणवत्ता भी काफी हद तक चेंज हो जाती है। वो गर्म से, उसकी तासीर गर्म से ठंडी हो जाती है, तो ये भी एक
0: नेचुरल
1: कूलर में
0: ठंडक का काम
1: नेचुरल
0: करता
1: ठंडक का काम करता है।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर सु कार्यक्रम गणगौर और आज आप सागे मेहमान है मीनाक्षी बोराणा जी का फूड ब्लॉगर है। तो मीनाक्षी जी एक बार आप फिर स्वागत है। तो मीनाक्षी जी जब आप सरबतारी बात ही कर रहे हैं तो जिका श्रोतागण है वह ना बताओ कि आम पन्नारी कमेन स्वादिष्ट रेसिपी जो झटपट वो जो सरबत है वो तैयार हो जाए और ज्यादा समय भी नहीं लगे।
1: आम पन्ना दो तरीके से बना सकते हैं अपन। एक तो है कि हमको बना के शरबत के रूप में रख देना है फ्रिज में और जब मन करे घोल के पी लिया, और एक है हम इंस्टेंट हाथों हाथ ताजा ताजा बनाए। तो ताजा बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, कच्चे आम को स्टीम करना है, स्टीम कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए और उसका गूदा निकाल देना है और उसमें पुदीना है, काला जीरा है, काला नमक है, शुगर की जगह मिश्री यूज करें तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो बस सबको ब्लाइंड करना है और बर्फ और पानी के साथ उसको मिला ले और बस तैयार है बनके। ये तो हो गया इंस्टेंट। और अगर हमें शरबत बना के रखना है कि हम एक बार बना ले और फिर 15-20 दिन काम आ जाएगा या महीना चल जाएगा, तो उसके लिए कच्चे आम को कट करके मिक्सर में ब्लाइंड कर ले पुदीने के साथ और एक हरी मिर्च डाल दे स्पाइस के लिए थोड़ा सा, और फिर भुना जीरा, काला नमक ये सब डाल के और वापस उसको ट्रांसपेरेंट होने तक पका ले।
2: तो बिल्कुल कच्ची कैरी आपा इस्तेमाल करिया करा, तो कैरी एकदम हरी होनी चाहिए या थोड़ी सी पीली पड़ी?
1: इसमें कैरी अलग अलग जैसे ले सकते हैं, बहुत ज्यादा खट्टी नहीं ले। मेरा सजेशन है आमपन्ना में जो तोतापुरी कैरी आती है उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, बहुत अच्छा होता है, बच्चों को भी इवन बहुत पसंद आने वाला है।
2: अच्छा।
1: तो तोतापुरी कैरी ऐसी रेसिपीज में उसकी ज्यादा डिमांड होती है।
2: तो कितनी

0: कह रही मैं आप अंदाजो कितनी शक्कर डाल सका।
1: जैसे हम हाफ के जी ले रहे हैं तो हाफ के जी शुगर उसमें ऐड कर ले, इक्वल
0: अच्छा
1: क्वांटिटी में
0: बराबर।
1: जाएगा।
0: अच्छा तो
1: और कुछ डिपेंड करता है कैरी कितनी ज्यादा खट्टी है,
0: खटास पर भी निर्भर करे कि
1: तो वो कितना बैलेंस कर पाएगी शुगर, उसको कितना बैलेंस। जैसे तोतापुरी है तो वो कम खट्टी आती है, तो उसमें शुगर कम डालते हैं तो वो इजीली बन जाती है।
2: तो बिल्कुल मीनाक्षी जी, अगर आप बात करा गर्मिया री, तो गर्मिया रे माई खस और बेल ए भी है जिका बहुत ही स्वादिष्ट शरबत बनाया माने जाया करें और प्रत्येक घर में है जिका बनाया करें। तो अबार आप स्टूडियो में पधार रखे हो तो मैं चाहवाला कि श्रोतावा ने आप री पसंद हो, चाहे खस रो हो या बेल रो, कोई एक आसान सी रेसिपी जिके वा बताओ।
1: रेसिपी तो दोनों ही बहुत आसान है, बस दोनों का मेथड अलग है। बेल का शरबत तो है बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। पका हुआ बेल लेना है, उसका गूदा निकाल देना है और उसको पानी में हाथों से ही करे तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। किसी भी मिक्सर का और यूज़ नहीं करना है इसमें। और बस मिश्री डाल दे, शुगर डाल दे, जैसे मिश्री डालो तो और भी अच्छा है, ठंडक देती है हमारे शरीर को। तो बस मिश्री डाल दे और पानी डाल के उसको अच्छे से मिला ले। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जा सीड्स यूज़ कर ले, चिया सीड्स यूज़ कर ले तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। काला नमक डालना है अंदर, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें तो बहुत ही अच्छा बन जाता है। बहुत ही इजी है और सबसे बड़ी बात ये हमारे पाचन को भी बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा बनाता है बेल का शरबत।
0: तो बिल्कुल आप सब्जा बीज की बात करी, तो सब्जा बीज कहीं खाली शरबत ने सजोन वास्ते होया करे या शरीर में भी
1: नहीं,
0: फायदेमंद रहेगा?
1: सब्जा सीड्स बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। सब्जा सीड्स जैसे एक्स्ट्रा जो भी हमारे शरीर में सब्जा सीड्स बहुत हद तक फैट बर्न करने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन बढ़ाते हैं।
2: तो जी हाँ, अभी आप डाइजेशन की बात करी और गर्मी में कभी नहीं डाइजेशन रीज की चीज है वह आपने लेनी जरूरी है ताकि आसानी से पच जाया करे। इन वास्ते आप शरबत है जिका पिया करा। तो शरबत री बात अब कर रहे हैं तो बच्चा जिका है हमेशा शरबत पीना पसंद करे, तो कोई इसो हेल्दी शरबत आपने ध्यान में है जिको स्वाद भी हुए पौष्टिक भी हुए और बच्चा ने पसंद भी आवे।
1: हाँ तो बच्चों को जब तक है, बच्चों को मार्केट की मैंगो ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बहुत ज़्यादा फूड कलर से प्रिजर्वेटिव, इतने ज़्यादा फूड कलर यूज़ होते हैं उनको लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए, इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सैक्रीन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। इवन वो घर पर बनाए तो ज़्यादा बेटर है और बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार बनाकर आप 1 महीना फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो जस्ट आम लेने हैं, कोई भी आम ले सकते हैं, बादाम आम, हापुस आम या फिर तोतापुरी आम, कोई भी आम लेके छील लेना है उनको। उनको बॉयल कर लेना है, जितनी आम की क्वांटिटी है उतने ही पानी में उसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद आम के पल्प को छान ले और उसको पीस ले, ब्लाइंड कर ले एकदम। वापस से अगर नीड है उसको छानने की तो छान ले, और एकदम बारीक हो गया है वो तो फिर उसको डायरेक्ट पानी में मिला ले बर्फ के साथ। और जितनी क्वांटिटी, मतलब जितना आपको लगे कि थिक रखना है, कितना पतला रखना है, उतना आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। शुगर डालनी है या फिर मिश्री डालना चाहो तो मिश्री डाल सकते हैं।
0: अच्छा जने इन्हें शक्कर के साथ आप पकावा तो आप कहीं की कर अंदाज लगा सका कि अब वो तैयार है, इन्हें ठंडो कर सका अब आप गैस नीचे उतारने?
1: जैसे आम, आम का जो हम पीसेस कट करते हैं वो बॉयल कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट दिखने लग गए हैं, तब तक हमें बॉयल करना है, इससे ज्यादा बॉयल करने की नीड नहीं है।
0: अच्छा तो गर्मियों में एक गुलाब और शरबत है वो भी ज्यादा पसंद करियो जाया करे, तो इन्हें ज्यादा स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग बनाने वास्ते कोई खास टिप्स?
1: गुलाब के शरबत को तो बहुत ज्यादा तरीके से पिया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से पिया जाता है। इसको मिल्क रोज बना के पी लेते हैं, इसका गुलाब फालूदा बना के पी लेते हैं, या फिर लेमन रोज मजीटो बना के पी लीजिए। तो गुलाब के तो बहुत ज्यादा तरीके से हम इसको सर्व कर सकते हैं, और इवन सर्व करना मतलब अलग अलग तरीका भी उनका बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है।

0: आप इतने सारे शरबत की रेसिपी आज मैंने श्रोता मैंने बता ही दिया हो, तो आप एक और सवाल पूछना चाहो कि अगर घर में ना अचानक मेहमान आ जावे तो उन समय एडो कौन सो शरबत है जिसको फटाफट तैयार हो जावे?
1: उस समय मैं लेमन मिंट मजीटो बनाना ज़्यादा प्रेफर करूंगी। एक तो बाहर से आते हैं गर्मी में, इतनी गर्मी में तो इतना रिफ्रेशिंग कुछ मिल जाए तो वो पहले तो उनको उसी में ही अच्छा लगेगा। तो उसकी बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, कुछ भी नहीं। लेमन और पुदीने को क्रश करना है, शुगर के साथ क्रश कर लें, जिसमें हम सर्व कर रहे हैं उसी में क्रश कर लें, सोडा और काला नमक डाल के सर्व करें। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा उसमें वो कुछ नहीं है, लेकिन फ्रेशनेस और एक तरोताज़ा वाली फीलिंग आ जाएगी अगर वो आते ही अगर गेस्ट को ये सर्व करोगे तो।
2: बिल्कुल, जहाँ मेहमान आ जाए तो भाई अपन संकट में घड़ी नहीं है कि मेहमान आया है तो माना कम से कम स्वागत रमाए, ठंडो मीठो है, खट्टो मीठो शरबत है जिको आप अपावा। तो मीनाक्षी जी, आ तो हुई शरबत री बात, अपना कहें नहीं कि सर्दी हो या गर्मी, कोई भी मौसम हो, जिका चाय रा शौकीन है या कॉफी रा जिका शौकीन है, बने थोड़ी सी ही मात्रा में सही, लेकिन चाय कॉफी तो बने चाहिए ही है। तो इन गर्मी रेमाए आप कुछ इसो तरीको बताओ कि कॉफी रो स्वाद भी है जिको आप लेता रहे गर्मी में, और चाय प्रेमी जिका है वह चाय रो भी स्वाद है जिको उठाता रहे।
1: जो लोग चाय और कॉफ़ी के शौकीन हैं उनको गर्मियों में बहुत बैलेंस तरीके से लेना चाहिए चाय और कॉफ़ी। कॉफ़ी है तो आइस कॉफ़ी बना लिया, कोल्ड कॉफ़ी बना लिया, या फिर लेमन आइस टी बना लिया, मिंट टी बना लिया, तो बैलेंस तरीके से ले। कम दूध वाली चाय है वो ज़्यादा लेनी चाहिए, कम मसाले वाली चाय ज़्यादा लेनी चाहिए, गुलाब की पंखुड़ियों की चाय आप उसकी भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा बैलेंस लेना गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
2: तो जी, अभी आप गुलाब री पंखुड़िया री बात करी, या एक चाय और वे पुदीने री, तो पुदीने री चाय री रेसिपी बता सको?
1: हाँ, पुदीने की चाय कुछ नहीं है, पानी में थोड़ा पानी को बॉईल करना है पुदीने की पत्तियों के साथ, और फिर ठंडा होने के बाद हनी के साथ सर्व करें। बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी इसकी।
2: और कॉफी रो इस्तेमाल किया कर सकते?
1: कॉफ़ी को कोल्ड कॉफ़ी बना लीजिए, आइस कोल्ड कॉफ़ी बना लीजिए, और अभी रिसेंट ही बहुत वायरल चल रही है एक रेसिपी की, हम कोल्ड कॉफ़ी को स्टोर कर सकते हैं एक बार बना के। शुगर या फिर हनी के साथ उसको मैश कर लीजिए, बीटर से अच्छा से बीट कर लीजिए, वो डेलगोनो फॉर्म वाली कॉफ़ी हो जाएगी, तो उसको हम फ्रीज़र में लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, इवन 1 मंथ तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो क्विक बन जाती है कि हमने वो डाली और ठंडे दूध
0: जब
1: में
0: भी मन
1: घोली,
0: करे जब भी एक चम्मच दूध में
1: घोलने
0: घोलने
1: घोल के पी लो। इवन गेस्ट भी आ जाए एकदम से तो वो बहुत ज्यादा सही है कि बस एक चम्मच लिया, डाला और घोल के सर्व कर दिया।

0: तो आखिर में चलता चलता मीनाक्षी जी इन गर्मियां रमाए को सेहतमंद रहने वास्ते और शरीर ने हाइड्रेट रखने वास्ते आपका इन टिप्स है जिका देना चाहोला।
1: ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, मौसमी फल खाएं, घर में बने शरबत वो ज़्यादा यूज़ करें, प्राकृतिक ड्रिंक्स जो हमारे दादी नानी के ज़माने की या जो चलती आ रही है, जैसे इमली का पानी है, ये है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लें, बाहर के ऑयली फूड से बचें,
0: बिल्कुल।
1: ऑयली ऑयली खाना जितना हो सके उतना कम खाएं, सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। और मौसम के हिसाब से अपन खान पान लें तो फिर लंबे टाइम तक हम सेहतमंद रह सकते हैं, स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं, शरीर में इम्यूनिटी एनर्जी बरकरार रख सकते हैं।
0: और बिल्कुल आज हमारे साथ हाँ आकाशवाणी स्टूडियो में फूड ब्लॉगर मीनाक्षी बोराणा जी। तो मीनाक्षी जी आज आप उनाले रो अमृत घूट सेहत और स्वास्थ्य भरोड़ा शरबत री विधि और टिप्स माने श्रोताओं ने बताई, तो आप रो कीमती समय माने साथ साझा भी करियो। आप पूरी आकाशवाणी टीम री तरफ सु और सुनने वाला सगला श्रोतागण री तरफ सु आप रो घणो घणो आभार और धन्यवाद है।
1: मेरी तरफ से भी आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपने विचार रखने के लिए।
0: बिल्कुल, आप एक बार पुनः धन्यवाद।

0: पूनम जी कहने कि दोपहर में मीठो खरबूजो तरबूज नारियल पानी घना स्वाद लगे करे। और खरबूजो भी देखो आपा कई तरह से हैं जो बना तैयार कर सकें, जहाँ आपा भी ने काट रखावा और बिरो एक कवे ने पेय पदार्थ भी बना सकें और बहुत ही सरल भी है। कहीं कुछ कौन कौन खरबूजे ने काट्यो और मिक्सी जार में डाले हो, बीमा आप चाहे मीठो बनाना चाहो तो थोड़ा चीनी डाल दो, वरना अगर नमकीन चाहो तो आप थोड़ा सा पुदीनो
1: काला
0: पुदीना काला
1: नमक
0: नमक सब डाल पीस और थोड़ा पानी मिला रहा आप ले सको। और एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि आम खाना कि पेड़ गिनना, रो अर्थ है कि मतलब सो मतलब रखना चाहिए। तो अबार अपन कहीं मतलब है वो बता दो।
1: अबारो मतलब कि गर्मियां रीति इतनी देर होगी बात करी रही यार, अबे मतलब री बात करा आज दिवस विशेष री। तो 11 महीने भारत रे महीने हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाए करे। और दिन 11 मई 1998 ने राजस्थान रे पोखरण रे महीने कराया गया सफल परमाणु परीक्षण री भी याद दिलावे, जो भारत ने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। और दिन वैज्ञानिक इंजीनियर और इनोवेटर्स रे तकनीकी योगदान ने सलाम कराया करे है। आज इन दिवस रे मौके पर फोन आउट रे माध्यम से आमंत्रित करिए आपा साइंटिस्ट एफ एंड ग्रुप कोऑर्डिनेटर रिसर्च डॉक्टर संगीता सिंह ने, जगह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आफरीसू है। तो जिना सु बातचीत करेला आराधना जोशी और इनकी प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ी।
2: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर सु गणगौर। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है और इन अवसर पर डॉक्टर संगीता सिंह जी आप रो आकाशवाणी जोधपुर गणगौर में घने मां सुस्वागत है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी देशवासियों को और आपको भी आज इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी।
2: बिल्कुल मैम, आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर अगर आप बात करा तो आप देखा कि महिलाओं और तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत ज्यादा योगदान भी है, तो आप रो इन्हें बारे में कई विचार है।
3: देखिए, आज का समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है और इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है। महिलाएं आज केवल सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भी आ रही हैं।
2: बिल्कुल
3: अब चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे वो जैव प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो कृषि अनुसंधान हो, पर्यावरण से के फील्ड में हो, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या फिर स्वास्थ्य विज्ञान को ही ले लीजिए, हर क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों ने

0: अपनी प्रतिभा और मेहनत से महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: हम्म,
0: और महिलाओं की जो संवेदनशीलता होती है, उनकी धैर्य, सूक्ष्म अवलोकन क्षमता होती है, वो नवाचार की सोच और वैज्ञानिक अनुसंधान को एक नई दिशा देती है। तो मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी की बेटियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपार संभावनाएं हैं, और आवश्यकता है केवल उचित अवसर, प्रोत्साहन और सकारात्मक वातावरण की है। और जब
1: जी
0: महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो न केवल अपने संस्थान बल्कि पूरे देश के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: बिल्कुल। तो जी हाँ, अभी आप बोला कि पूरे देश रे विकास में महिलाएं हैं, आपने जी की बेटियां हैं, बड़ा योगदान है और वे आगे बढ़ा रही है। तो वे कौन कौन सा क्षेत्र है जिसके में महिलाएं वैज्ञानिक के रूप में आप योगदान दे देश रे विकास में भूमिका निभाई है?
0: महिला वैज्ञानिकों ने बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें अपने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। और उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो कृषि एवं वानिकी अनुसंधान में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के साथ कार्य करने वाली एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर अमृता पटेल। उन्होंने कई महिला कृषि वैज्ञानिकों के इसमें उन्होंने उनके साथ दिया, और हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन और सतत कृषि विकास में बहुत बढ़िया योगदान दिया है। इसके साथ ही अगर हम चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में देखते हैं तो डॉक्टर रजनदीप कांग हैं। इन्होंने वैक्सीन अनुसंधान और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत विश्व स्तरीय काम किया है।
1: जी
0: अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान में रितु करिधाल हैं। उन्होंने चंद्रयान और मंगलयान मिशनों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्हें रॉकेट वुमेन के नाम ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाया जाता है। साथ ही जैव प्रौद्योगिकी पर्यावरण विभाग विज्ञान में है डॉक्टर सुनेत्रा गुप्ता। इन्होंने रोग विज्ञान, जैव विविधता से जुड़े हुए शोध में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। और अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो देवजानी घोष हैं। इन्होंने डिजिटल तकनीकी और आईटी सेक्टर में महिलाओं के नेतृत्व की एक नई पहचान दी है। तो ये सभी महिला वैज्ञानिक हैं, देश की युवा पीढ़ी हैं और विशेषकर बेटियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल। अभी आप बहुत सारा नाम जिका है आप बताया हो, तो आप भी एक वैज्ञानिक हैं, तो आप भी आप क्षेत्र में बहुत कुछ कर चुके हो और बहुत नया शोध भी कर रहे हो, तो कुछ बारे में भी जानकारी दो।
0: हाँ जी, मैं एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में पादप रोग विज्ञान विभाग में मैं कार्यरत हूँ, और मेरा जो शोध है वो मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन पौधों से प्रभावित होने वाले जो रोगों हैं उनके प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल जैविक उपायों के विकास पर केंद्रित है। तो वर्तमान में हम ऐसे जैविक नियंत्रण उपायों का पर कार्य कर रहे हैं जिनके माध्यम से पौधों को रोगों और मिट्टी जनित रोग जनकों से हम सुरक्षित रख सकें, और इसके अंतर्गत लाभकारी सूक्ष्म जीव और जैव एजेंट्स का हम उपयोग कर पौधों की वृद्धि एवं रोग प्रतिरोगात्मक उनकी क्षमता भी बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण से जो रोग और बढ़ रहे हैं उनका भी अध्ययन किया जा रहा है, ताकि भविष्य में वन परितंत्र को सुरक्षित रखने के लिए टिकाऊ और व्यवहारिक समाधान हम विकसित कर सकें। जो हमारा जो उद्देश्य है केवल वैज्ञानिक शोध तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों, वन विभाग और सामुदायिक संस्थानों तक उन जो हम तकनीक जो हम बनाते हैं, नई तकनीकों की खोज करते हैं, वो उन तक पहुंचाने का भी हमारा कार्य है, ताकि पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा मिल सके।
1: बिल्कुल। तो संगीता मैडम, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और आज आप बहुत अच्छी जानकारी दी हो। तो डॉक्टर संगीता सिंह जी, आप अपना अमूल्य समय निकाले हो, इतनी बेहतरीन है जो कि बातचीत करी, तो आप आकाशवाणी जोधपुर की तरफ से बहुत बहुत आभार है।
0: जी, धन्यवाद।
2: तो सखियां, अबार अपा सुनी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आराधना जोशी री फोन रे माध्यम से बातचीत साइंटिस्ट एफ एंड ग्रुप कोऑर्डिनेटर रिसर्च डॉक्टर संगीता सिंह, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आफरी जोधपुर सु।

0: तो पूनम जी,
1: हम्म,
0: चाहे आंखें लाल हो या क्या दिमाग गर्म हो, हर काम में एक वे तरबूज। तरबूज अगर आपा सेवन करा तो आंखें री लाली है जी के भी कहवे नहीं ठंडी हो जाए, और दिमाग में अगर बहुत ज्यादा गर्मी है या शरीर गर्मी है तो पूनम जी सब चीज है जी की दूर हो जाए।
1: सही
0: तो इन
1: है।
0: वास्ते आप गर्मिया में तरबूज रो सेवन अपन जरूर जरूर करना चाहिए। और तरबूज रो देखो कहवे ने जमा पर आप एक छोटो सा क्यूब बना पर आप ले सका। तो इन वास्ते करना चाहिए अपने मीठो तरबूज जी को है ना टुकड़ा काट लो, और थोड़ी सी पुदीने री पत्तियां और थोड़ा सा काड़ो नमक और जी को आंसर लेना पीस लो मिक्सर में पीस, और जी की आइस ट्रे जी की वे बाद में आप पूरा भर परा और फ्रिज में सरका दो। ए जी की क्यूब है छोटी छोटी जब जम जाए तो आप इच्छा अनुसार आप एक दो तीन जो भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल और आप तुरंत कहे नहीं रेडी आप रो शरबत।
1: बिल्कुल सही क्यों, इन्हीं तरीका हम पान रो शरबत भी आप बना सका। ताजा पान री पत्तियां ले लो चार पांच, उन मैंने सौंफ 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने स्वाद अनुसार, थोड़ा ज्यादा टेस्ट चाहिए तो भिगड़ी गुड़कंद ले लो, थोड़ा सा हरी इलायची और मिश्री या चीनी ले लो, और ठंडो पानी ले सको, और अगर दूध में पीनी चाहो तो दूध भी ले सको। तो पान रे पत्ता ने चोखा दोनों छोटा छोटा टुकड़ा कर लो। अभी मिक्सी रे जान रहे मैंने पान रे टुकड़ा हो गया, सौंफ हो गई, गुड़कंद, इलायची, मिश्री सब चीजें डाल लें, 2-3 चम्मच पानी डाल लें, पेस्ट बना लो बारीक और एकदम स्मूथ। अभी ना आप कांच से जा रहे मायने एजी को ठंडो करने भर सको, और हफ्ता भर तक फ्रीज में मायने स्टोर करने भी रख सको। जब भी आपने पीने की इच्छा होवे तो 2-3 चम्मच पान रो पेस्ट पानी या दूध रे मायने मिला लो, बढ़िया मिक्स कर लो और सर्व कर दो।
0: बिल्कुल आपा जी का कहने शरबत जितना भी आपा बनावा ने पूनम जी तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना चाहिए जो भंडारण करा तो आने हमेशा कांच की बोतल में रखना चाहिए, और कांच की बोतलें जो कि पूरी अंदरों साफ होनी चाहिए। प्लास्टिक की बोतलें प्रयोग अपन नहीं करना चाहिए और हवा बंद होना चाहिए। यूँ नहीं कि आप ढक्कन है जो ढीलो छोड़ दो, टाइट बंद कर रखो। और जिका अपना मिट्टी रा पाड़ा से आवे नी वहां में आप पानी भर और वे बोतलें जिके वहां में रखो, तो जो आप जो कोई शरबत है वहां में ना तो चीटी लागेला और ना ही कोई आपने भी यूं लेवा के भी शरबत बताया जो खराब हो जाए। थोड़ी ठंडी हवादार जगह रखो तो ज्यादा सही रहे। और जिको भी आप काम में ले रहे हो चाहे आप गुलाब री पत्तिया रो बना रहे हो या आम रो बना रहे हो, हमेशा काम लेवन पहले मैं सब चीजें ने साफ सुथरो कर फिर ही वन शरबत है जिको बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही की आराधना जी। और चीनी की जगह अपने अगर मिश्री का उपयोग अपा करा तो वो ज्यादा शरीर वास्ते फायदेमंद रहा करे। हमेशा कोई भी शरबत आप बनाओ तो मिश्री का उपयोग आप करो। इन्हीं के साथ और भी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जिनको ध्यान रखो, अगर आप शरबत बनाता टाइम तो शरबत स्वादिष्ट भी बने और सेहत रे वास्ते भी फायदेमंद रहे।
0: देखो मेन तो आपा ने कहीं जी चाशनी वे फिर ध्यान रखना चाशनी ने बहुत ज्यादा पकावनी नहीं वे, क्योंकि अगर आप तार बंद गयो तो अपन जो कोई शरबत जो को आदमी देखो आप बोतल में देखो चीनी जम जाया
1: जम
0: करे,
1: जावे।
0: तो अपन बस वो ध्यान रखना कि अपन ने चाशनी जी की है कच्ची चाशनी बनानी है, अपन चाशनी ने घणो

0: कावण नहीं है, और चाशनी जदि लागे अपने कि भाई आप थोड़ी सी मेल्ट हो गई है तो भी सफाई भी करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो भी अंदर खराश है जिको आ जाए,
1: बिल्कुल
0: तो इन खराश नहीं आवे इन वास्ते एक मिट्टू काणो है जिको भी सुन लेवा।

0: तो पूनम जी के मैं जब गाड़ी में राजस्थानी अपन मिल जाए तो बार खाना खाने पीने की जो चीज़ें हैं वे भरपूर, और इन गर्मी में भी आप बान खान देखो कि नींबू है वो आपने मिल जाए, ला आम पन है जो को मिल जाए, यूँ नहीं है कि भाई अब ट्रेन में गया है तो बड़ा शरबत नहीं मिला। अपने सखियाँ जी की इतनी चतर है कि छोटी छोटी बोतलें में शरबत भर पर सागे ले जाओ, और सागे जी का मिल रहे अपन ऐसा यात्री मारी है जी की भी मनवार करया करे। तो आज रो आप जो कार्यक्रम आप प्रस्तुत करो ये उद्देश्य हुई हो कि अपना जी का पारंपरिक शरबत जी का है ये घर में आप तैयार करा तो ज़्यादा सही रहे, घर बुजुर्ग बच्चा और इन्हें सागे सागे अपन पूरे परिवार की सेहत है वहा बढ़िया रहे वाला और ऊर्जावान रहे वाला। तो देखो इस अमृत घूंट रहे इन यात्रा में आप सागी दो सखियां पूनम देवड़ा आराधना जोशी, और आज रे कार्यक्रम की प्रस्तुति ही राजेश लामरोड, संयोजन मनीष सोलंकी।
1: इनके साथ ही कार्यक्रम में टाइम भी पूरा हो रही है तो आप दोनों सखियां ने दिलाओ सी
0: चाला
1: राम राम।
0: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल और सूर्य नगरी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:15 होने को है। आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री

0: शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्री

0: मंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अम्बुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चलें। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिक

0: नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
1: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
2: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जिसका आज 1281वां अंक प्रसारित हो रहा है।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर द्वीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
2: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन सर।
3: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
4: यस सर।
3: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
6: साहब आप क्यों पर...

0: परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
0: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
0: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
0: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
2: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो। अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।

0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
2: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
3: सर, सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
4: यस सर।
2: नाथ सिंह, निशाना साधो।
3: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
3: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
4: जी।
2: फायर।
3: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
3: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी

0: पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आईं, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे। तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड नंबर 1281। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल।

चैनल है। दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे संध्याकालीन सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब दिल बस एक ही चीज चाहता है, अपना फेवरेट गाना, और वही गाना अचानक रेडियो पर बज जाए तो कैसा लगेगा? वो फीलिंग, वो कनेक्शन, जैसे किसी ने आपके दिल की बात सुन ली हो।
1: और दोस्तों, इसी एहसास को ना हर मंडे की शाम ठीक 5 बजे लेकर आते हैं हम दोनों कुछ खास, और आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, जहाँ हर गाना सिर्फ म्यूजिक नहीं है, आपके इमोशंस का साउंड ट्रैक होता है।
0: बिल्कुल, तो तैयार हो जाइए अपनी फीलिंग्स, अपनी यादों और अपने फेवरेट सॉन्ग्स के साथ एक खूबसूरत म्यूजिकल सफर के लिए सिर्फ युववाणी में, जहाँ हम रेडियो बडीज, मैं अदिति मर

0: लिया और मेरे साथ हैं,
1: यानी कि मैं आपकी दोस्त स्वस्ति बंसाली। वही ये पूरे एक घंटे तक इस प्रोग्राम में, इस सफर में सुनेंगे आज हम बहुत अच्छे अच्छे गाने। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी फीलिंग के साथ हमारा ये पहला गाना।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी, जहां हर शाम बन जाती है इमोशंस, मेमोरीज और म्यूजिक का एक खूबसूरत सफर।
1: बिल्कुल, और आज का शो है लिसनर्स के नाम, उन मेल की उनकी फरमाइशों के नाम, जो फरमाइश ना दिल की फीलिंग लेकर आते हैं।
0: बिल्कुल, किसी ने अपना प्यार भेजा है, किसी ने यादें और किसी ने खास इंसान के लिए डेडिकेशन।
1: तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस म्यूजिकल सफर को आपके मेल्स, आपके पसंदीदा गानों के साथ।
0: लेकिन उन मेल से पहले, जो अगर आप भी अपनी मेल्स भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपनी मेल आईडी पे भेज सकते हैं, जो कि है yuvapasandjodhpur@gmail.com,
1: या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 9413329359 पे।
0: जल्दी से अपनी मेल्स भेजिए, हम आपकी मेल्स का वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए सुनिए ये सॉन्ग।

0: दोस्तों कुछ मेल्स शोर नहीं करते, बस चुपके से दिल को टच कर जाते हैं, बिल्कुल इस गाने की तरह। तो चलिए अब जो मेल्स आए हैं हमारे पास उसका जो सफर है वो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि पहली मेल किसकी ओर से आई है।
1: जो पहली फरमाइश है ना वो सीधा आई है महाराष्ट्र से, शंकर लाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी जायसवाल की ओर से।
0: और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की ओर से ये फरमाइश।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज ना युववाणी कार्यक्रम थोड़ा अलग है क्योंकि आज है मंडे, यानी कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी दौर चल रहा है, यानी कि युवा पसंद कार्यक्रम। तो चलिए फिर इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको अगली फरमाइश किसकी आई है।
1: जो अगला गाना है काफिराना है और वो है मूवी केदारनाथ से, तो उसकी फरमाइश आई है
0: जेल रोड दिल्ली से बाबूलाल दीवाना, उमाराज, दिव्या भारती और साथ ही साथ ना जलंधर से भी आई है प्रभा कौर, संदीप, राधिका कौर की ओर से।
1: और भाटापारा राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान की ओर से।
0: तो चलिए फिर सुनते हैं इनकी फरमाइश पे हमारी अगला गाना।

0: दोस्तों, इस फरमाइशी इस सॉन्ग से हमको जो एहसास मिला है वो है कि हम एक चाय का कप हाथ में लेके बैठे हैं और हमारे सामने वादियां हैं और ठंडक का एहसास मिल रहा है इस भरी गर्मी में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का तो क्या ही नाम ले। मतलब दोस्तों, गर्मी से याद है कि जितना आप खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी पीते रहे, खुद का ध्यान रखें इस भरी गर्मी में।
0: बिल्कुल, अब स्वस्ति इसको आगे बढ़ाते हैं, इस शो को, और फरमाइश लेते हैं हम अगली हमारी, जो आई है छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नौकालाल वर्मा की ओर से।
1: साथ ही साथ ना अगली आ चुकी है गांव खरकड़ा 24 से गोलू, सागर, सीताराम, अंशिका, तमन्ना कांगड़ा की ओर से।
0: और मानसी, अनिल, गौरव, कविता अरोड़ा दिल्ली से।

0: दोस्तों अभी आपने सुना मछली
1: क्यू आर कोड स्कैन करो पांच।
0: तो अगर आपको भी अपना फेवरेट अगर आपका फेवरेट सॉन्ग अभी तक इस लिस्ट में नहीं आया ना तो आप भी अपना मेल कर सकते हैं फेवरेट सॉन्ग इस मेल आईडी पर जो है yuvapasandjodhpur@gmail.com
2: या फिर साथ ही साथ आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे हमारे नंबर पे जो है 9413239359 पे। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपनी फरमाइश भेजिए क्योंकि थोड़ा ही समय बाकी है।
0: तो आइए देखते हैं अगली फरमाइश किसकी ओर से आई है। और ये फरमाइश करी है जो अगला सॉन्ग आप सुनने वाले हैं उसकी फरमाइश आई है झालमन गांव हनुमान दड़ी जोधपुर से राहुल भागीरथ बरवड़ देवसेन सुनील खिलेर।
2: साथ ही साथ ना अगली जो आई है वो है कुरुक्षेत्र से दीपक अनुश्री प्रमिला और देवश्री की ओर से।
0: और गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार ड्यूडी प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र कुमार ड्यूडी।
2: और साथ ही साथ सारनपुर से सुरेंद्र डोम आशु डोम की ओर से। चलिए फिर इनकी फरमाइश सुनते हैं हमारे अगला गाना।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में लेट आते हैं, पर आते ही सब कुछ सही सा लगने लगता है। बस इस मेल की तरह जो आई है
4: सारनपुर जनकपुरी से, जॉन रोजी पल विलिस डिकैस्ट्रो की ओर से,
3: और कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, डॉक्टर प्रशांत राजेश यादव, संचित प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख की ओर से।
4: और जो अगली आई है वो आई है राजेश, राजदीप, राशि, श्रीपति, शीतल राजेश की ओर से,
3: और भोपालगढ़ से राजू राम, कृष्ण, विजय और रामेश्वर भाटी की ओर से ये फरमाइश।

0: दोस्तों हर मैसेज के साथ ऐसा लगता है जैसे हम सब ना एक फैमिली की तरह कनेक्टेड है, क्योंकि आपके वर्ड्स और हमारी आवाज बस इसी तरह बनता है। ये सेगमेंट इतना प्यार भरा और इतना मेमोरेबल
1: और इतने बेहतरीन गानों की फरमाइश आती है ना, तो फरमाइश करने वाले के साथ साथ सभी श्रोताओं का दिन भी खास बन जाता है। तो आइए अब सुनते हैं बेख्याली मूवी कबीर सिंह का, तो जिसकी फरमाइश आई है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी प्रकर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह की ओर से।
0: साथ ही साथ अगली जो आई ना वो है कुरावली से अनिल कुमार माया राहुल विनीत सुमन वर्मा की ओर से
1: और खेतेश्वर कृषि फार्म मीठा से नाग सिंह राजपुरोहित की तरफ से। तो चलिए उनकी ये फरमाइश का सॉन्ग सुन लेते हैं।

0: दोस्तों सच में क्या ही बात है, मतलब जितना सुकून इस गाने में था ना, उससे कहीं ज्यादा सुकून ना हमें आपके मैसेजेस और मेल्स पढ़ने में आता है। एक अलग ही जान डाल देते हैं इस शो में।
1: बिल्कुल, तो आज के इस प्रोग्राम का आखिरी फरमाइश लेते हुए आपको सुनवाते हैं शिवाय मूवी का दरखास्त सॉन्ग, जो आया है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की ओर से ये फरमाइश।
0: अगली है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमरदीप की ओर से। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की शाम का और हमारे इस कार्यक्रम का ये आखिरी गाना।

एक और लास्ट फरमाइश लेते हुए आपको सुनवाते हैं ये गाना, लेकिन उससे पहले आई है फरमाइश गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता।

0: नोटिफिकेशन रुक ही नहीं रहे, और सच में हमें भी इतना मजा आ रहा है ना नोटिफिकेशन पढ़ने में।
1: पर दोस्तों क्या करें, दिल पर पत्थर रखे हमको ये प्रोग्राम यहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि समय की अपनी पाबंदी है। तो
0: आज की युवाणी कार्यक्रम में हम जुड़े हुए थे आपकी दो रेडियो बड़ीज, यानी कि मैं आपकी दोस्त स्वस्ति बंसाली, और आज मेरे साथ है
1: मैं अदिति मौर्या। आज की प्रस्तुति थी राजेश लमरोड की ओर से। नमस्कार।

0: युवा श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का

0: एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से एक वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiv. In a social media post, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Earlier addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said India is moving ahead with self-confidence and that the country's cultural heritage has played a key role in this progress. He said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhbhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the 5th meeting of the informal group of ministers on West Asia chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi today. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout

आपने जानी आज के प्रसारित होने वाले शेष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। कल सवेरे 6:05 पर श्री रामचरित मानस, 6:15 पर कार्यक्रम वंदन, ये भक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुविचार संग। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत कल सवेरे 7:00

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार सवेरे 8:30 पर प्रसारित होगा। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत श्रोता सुन सकेंगे कल सवेरे 10 बजे और दोपहर 12 बजे।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में गैर फिल्मी नगमे। ये नगमे आप सुन सकते हैं कल सवेरे 10:30 पर और दोपहर 12:30 पर। साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं आप फिर सुन सकेंगे रात 9:15 पर भी। किसान भाई बहनों के लिए चौपाल सजेगी साय 7:00 और कृषि जगत दोपहर 1:05 पर। विषय रहेगा गवार फली फसल में खाद एवं उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन पर चर्चा। कार्यक्रम नारीवाटिका महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम दिन में 1:15 पर और युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी साय 5:00। सात 7:30 पर होगा कार्यक्रम सीमाडेरी गूंज। श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन चाहे गीत के रूप में आपके सामने प्रसारित होगा रात 10:00 और कल रात आप अपने फरमाइश हमें भेज सकते हैं ईमेल और पत्रों के द्वारा मन चाहे गीत के कार्यक्रम में। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। श्रोता आप सुन सकेंगे एक देशगान।

0: श्रोताओं, समूह स्वर में सुना अभी आपने ये देश का मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय 6:20 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् सोमनाथ अमृत पर्व न केवलं भूतकालस्य उत्सवः अस्ति अपितु आगामि सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणासूत्रो भविष्यति। मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। केन्द्र प्रशासनेन 25+2000 वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। सहैव अनुमीयते यत् आगामी वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सोमनाथ मन्दिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजाम् अकरोत्। मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणः प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मन्दिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते।

0: तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति अपितु आगामि सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्रोतः भविष्यति।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणुत्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत एक किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयाः स्वीकृताः। मुख्यमंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी पञ्चचत्वारिंशत् दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्य केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रिय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मंत्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां पञ्चवर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासैहि भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्ण क्रयणे नियन्त्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो

0: मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: केन्द्र प्रशासनेन पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियम वीबीजी रामजी इति अधिसूचित। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थिति सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढ़ा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन एसबीआई शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामी वित्त वर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् जीडीपी वृद्धि प्रायः 7.2%

0: जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थिति सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढ़ा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन एसबीआई शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामी वित्त वर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् जीडीपी वृद्धि प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघ गर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु ओपल वर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थिति भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। आईपीएल क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय 7 बजे हैं। काश्तकार भाई बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल। चौपाल में आज विशेष है चिरमी। क्षमा कीजिए, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
2: Namaskar and good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company specific queries. And the numbers at which you can call us are as follows: 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. Of course, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add prefix code 011. All right? Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
3: Dhanyavad Lalima. Namaskar, Shrotao. Market Mantra mein aapka swagat hai, jahan hum taza aarthik khabrein aap tak laate hain. Aaj Somvar hai, aur har Somvar ki tarah, aaj bhi hum aapke prashno ko seedhe karyakram mein shamil karenge. Is कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं: 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों का जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम एक दूसरे को सुन सकें। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। नमस्कार शिशिर, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
4: नमस्कार।
5: पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
6: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। जो हमारी अजय सांस्कृतिक भाव

0: भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तनोट माता, पुष्कर, खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ जैसे आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
1: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहां भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली के मुंडका बरक्कलवाला टोल प्लाजा पर इस बैरियर रहित तकनीक की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस उन्नत प्रणाली से टोल प्लाजा पर लगने वाला समय कम होगा और ईंधन की बचत होगी तथा प्रदूषण में काफी कमी आएगी। नई तकनीक के तहत वाहन चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टोल कॉरिडोर से गुजर सकेंगे और टोल का भुगतान स्वचालित रूप से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सालाना लगभग 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। श्री यादव आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने बताया कि अगले महीने भारत में पहली और दूसरी तारीख को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों के भीतर देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
2: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का यह अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल का भी विशेष प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वे आज जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विज्ञान क्लबों से जुड़े छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। इससे पहले राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान और तकनीक का उपयोग समृद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने संस्थान से अनाज और सब्जियों में पेस्टिसाइड तथा रसायनों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील को राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में

0: एक बड़ा कदम बताया है। श्री बेरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान प्रधानमंत्री ने हमेशा ऐसे दूरदर्शी निर्णय लिए हैं जिनसे देश सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक एकजुट होकर प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करें।
1: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो, तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए, गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से शुरू हुई स्वगणना में पिछले 10 दिन में 6.5 लाख से अधिक परिवारों ने भाग लिया है। इन परिवारों ने इस डिजिटल प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। स्वगणना के मामले में जयपुर जिला अव्वल है। 50,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना पूरी की है। सीकर जिला 32,000 परिवारों की स्वगणना के साथ दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि स्वगणना की प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह काम 14 जून तक चलेगा। उधर बालोतरा जिले में शत प्रतिशत स्वगणना पूरी करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को आज जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। भीलवाड़ा के रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए रीको ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 1500 से लेकर 36,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशक रीको के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगामी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रीको ने इस पार्क में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 221 करोड़ रुपए विकसित किए हैं। राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के कई हिस्सों में आज लू से जनजीवन प्रभावित रहा। कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रातें भी इन दिनों तप रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फलोदी में तापमान 46.8 तथा जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले 4-5 दिन बना रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में इस दौरान लू का दौर जारी रहने की संभावना है। उधर अगले 48 घंटों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में कहीं कहीं तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा मार्ग पर आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वंडर चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए इस हादसे में इन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये युवक मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्यभर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। बालोतरा रिफाइनरी में जुलाई महीने से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से यूनिट की कमीशनिंग का काम शुरू हो जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे, किंतु उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले यूनिट में आग लगने की घटना के बाद ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

0: रिफाइनरी से जिले की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। इससे बालोतरा प्रदेश का तेजी से आगे बढ़ता जिला बन चुका है। तेजी से हो रहे विकास की कड़ी में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, पचपदरा बालोतरा में लग्जरी होटल्स और कई नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं। साथ ही रेलवे की ओर से बालोतरा से रिफाइनरी तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम किया जा रहा है। वहीं कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी बालोतरा बाड़मेर तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ रीको ने रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट के उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की है। बोरावास कलावा में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते हुए पहले चरण में भूखंडों की नीलामी भी की जा चुकी है। वहीं ये स्थान पेट्रोकेमिकल्स हब बनने की ओर तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बालोतरा रिफाइनरी क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें स्थानीय उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और रीको के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना के शुरू होने के बाद बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं बनी है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। बैठक के दौरान राजस्थान पेट्रो जोन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि रिफाइनरी के पास बोरावास कालावा, सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, मालियों की ढाणी, थोब और जेरला क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राम रथ अभियान के जरिए जिले के गांवों ढाणियों के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 27 अप्रैल से शुरू हुआ ये अभियान 15 मई तक चलेगा। ग्राम रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 13 विभागों की सरकारी योजनाओं, खासतौर पर कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, राजस्व, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। रथ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हर रथ में एक सुझाव पेटिका है। इसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन तक सीधे पहुंचा रहे हैं। रथ में पहली बार कलाकार भी शामिल किए गए हैं, जो रथ के साथ गांव-गांव जाकर लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। जिले की सिवाना, पचपदरा और बायतू विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में ये रथ पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपाल भी आयोजित हो रही है, जिसमें स्थानीय विधायक, जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचकर आमजन की परिवेदनाएं सुन रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। श्री बागड़े ने आसोतरा में ब्रह्मधाम में पूजा अर्चना की और गादीपति तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मवड़ी के ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल पहुंचे। उन्होंने गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने सदैव हमारी सभ्यता और संस्कारों का संरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में ज्ञान का अथाह सागर समाया हुआ है और भारत ने अपने इसी ज्ञान और दर्शन के बल पर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है। जिले में 4 मई से 10 मई तक अग्निशमन सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज रखी गई है। अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियों के साथ आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं बालोतरा जिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसके साथ ही बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मारी निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में आए हाईवे माथे बिना रुकिया गाड़िया रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्यरा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। जयपुर रा कोचिंग हब में इनोवेशन

0: सेंटर बनायो चावेला और प्रदेश रा आतुनी हलका माए जबरदस्त गर्मी और लू जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका माए जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। गुजरात रा सोमनाथ मंदिर न ऊजू बनावन रा 75 साल पूरा भेवन रा मौके आखा देश माए आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाई चियो। ये मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर माए पूजा अर्चना कीनी। गुजरात माए राखी जिया सोमनाथ अमृत महोत्सव माए श्री मोदी कहो के सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश रे आत्मा री निशानी है। वह कहो कि सोमनाथ लोगों ने याद दिलावे है कि जड़ाऊ जुड़ियो रहवन री सूरत में ही कोई देश लंबा भगत ताई मजबूती चाल सके है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा झारखंड महादेव मंदिर माए राखी चियो। इन माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के 75 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रा संकल्प ओ सोमनाथ मंदिर ने ओजो सुधारी जियो जो माणी बेहतरीन सांस्कृतिक भावना रो दर्शाव करे है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री विकास और विरासत री सोच री सराहना करता थका कहो के देश भर माए अयोध्या काशी और उज्जैन सरीखी धार्मिक ठोड़ा रो कायाकल्प करियो चारियो है और राज्य सरकार री तनोट माता पुष्कर खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ सरीखा आस्थारा केंद्रा ने विकसित करण सारू लगातार काम कर रही है।
2: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहो है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम सागे देश माए हाईवे मैनेजमेंट रो नुओ दौर शुरू भयो है। वे आज नई दिल्ली रा मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा मत है बिना बैरियर वाले तकनीक री शुरुआत कीनी। श्री गडकरी कहो कि ई तकनीक गाड़ियां टोल कॉरिडोर 100 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार निकल सकेला और टोल रो चुकारो आपू आप वह जावेला। वे कहो कि ई व्यवस्थाओं हर साल करीब 285 करोड़ रूपया रो तेल बचेला। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि बाघ शेर और चीता सरीखा मोटा जिनावरा न बचावन सारू कारोबारियां का न्यू रकम देवनो घणो जरूरी है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII रासालाना व्यापार शिखर सम्मेलन में बोल रहा है। श्री यादव कहो कि पहलो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन 1 और 2 जून ने नई दिल्ली में रखियो जावेला। वे बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाला राज रा 10 साल माए देश माए टाइगर रिजर्व री तादाद माए बढ़ोतरी भी है।
3: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7, 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का यह अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी रोजगार और आजीविका मिशन कानून लागू विवरण री अधिसूचना जारी कर दीनी है। ई पाछे ओ कानून 1 जुलाई आखा देश माए लागू भेजावेला। इन तेत गांवाई हलका माए साल माए 125 दिन री मजूरी री

0: गारंटी दी जावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब ई मद माए चालू माली साल माए 95,692 करोड़ रुपया राखी जिया है। इस आगे महिला मजूरानी भागीदारी बधावन सारू कमठाणा माथे बच्चानी देखभाल रा खास प्रावधान करी जिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल ने बधावो देवन सारू महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त रा नाम पना ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करियो चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर माए राखी जिया राज्य स्तर रा जलसा माए ओ ऐलान कीनो। वे कहो कि जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर खोलियो जावेला। कार्यक्रम रे दौरान श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश भर रा विज्ञान क्लबों जुड़िया विद्यार्थियों सागे बातचीत कीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ही विज्ञान और तकनीक ने समृद्ध और स्वस्थ जीवन सारू काम लेवन बाबत कहो है। वे आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर रा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी का नींव राखी जिया कार्यक्रम माई बोल रहा है। श्री बागड़े इन संस्थान अनाज और तरकारियां ने बचावन सारू काम ली जावन वाली कीड़ा मारन री दवाइयां और रसायना री जांच सारू नुआ उपकरण विकसित करन बाबत कहो। वे कहो कि मौजूदा दौर माए खान पीन री चीजा माए जहरीली चीजा री मौजूदगी री जांच घनी मोटी जरूरत है। ई मौके राज्यपाल राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 री स्मारिका और पोस्टर रो विमोचन कीनो। चालू माली साल 2026-27 माए देश री माली व्यवस्था माए 6.6% री बढ़ोतरी रा आसार है। भारतीय स्टेट बैंक कानियों आज जारी रिपोर्ट रे मुजब लाडला माली साल री चौथी तिमाही माए असली सकल घरेलू उत्पाद GDP माए बढ़ोतरी रो अनुमान करीब 7.2% लकैचियो हो। इबीचे उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री साधना ने बुद्धियों काम लेवन और बचत री अरज ने देश ने माली तौर मजबूत बनावन री दिशा माए मोटो जतन बतायो है। श्री बैरवा कहो कि दुनिया रा मौजूदा हालात न ध्यान रखता थका विदेशी मुद्रा भंडार न बचावन सारू जनता ने प्रधानमंत्री री अरज माननी चाहिए।
1: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं कर दे एक उन्होंने कहा है संदेश दिया है कि अफवे नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 रा तेत 1 मई चल रहा जनगणना रा पहला दौर रा तेत करी जी स्वगणना माए लाडला 10 दिन माए 6.5 लाख बत्ता परिवार शामिल भैर डिजिटल प्रक्रिया पूरी कर लीनी है। स्वगणना रा मामला माए अव्वल जयपुर जिला माए 50,000 बत्ता परिवार स्वगणना पूरी कर लीनी है। सीकर जिलो 32,000 परिवारों री स्वगणना सागे दूजा नंबर माथे है। ध्यान जोग है कि स्वगणना रो काम 15 मई ताई चलेला। 16 मई 14 जून ताई प्रगणक घर घर जार मकाना री गिनती करेला। इबीच बालोतरा जिला माए सगला घरां माए स्वगणना पूरी करावन वाला प्रगणका और सुपरवाइजरां रो आज जिला कलेक्टर मान कीनो। भीलवाड़ा रा रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क माए कारखाना लगावन वाला सारू रिकोरी ओर प्लॉट देवन री प्रक्रिया शुरू करी ची है। इन तेत 2,500-36,000 वर्ग मीटर ताई रा प्लॉट मुहैया कराया जावेला। राइजिंग राजस्थान अभियान रा तेत राज्य सरकार सागे करार करन वाला निवेशक रिकोरा ऑनलाइन पोर्टल रे जरिए 14 मई ताई अर्जी दे सके है। ई पार्क माए बुनियादी सुविधा विकसित करण सारू करीब 221 करोड़ रुपया मंजूर करी चिया है। रब मौसम राज्य रा आतुणी हलका माए घनी जोरदार गर्मी विच लू बाज रही है। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका माए आज लू बाजण जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। बाड़मेर माए 47.3 फलौदी माए 46.8 जैसलमेर माए 46.5 और बीकानेर माए 45.5

0: डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। कई थोड़ा रात्रि बगत ये तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करी चियो। मौसम केंद्र जयपुर रा मुजब दिन और रात्रि बगत तापमान माए बढ़ोतरी आवता 4-5 दिन ताई चालती रेवन रा आसार है। इन दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग माए लू बाजती रेवन री शंका है। इन बीचे आवता 48 घंटा माए बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का माए कठा कठा तेज आंधी सागे छाटो छिड़को वेवन री संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिला माए निम्बाहेड़ा गेला माथे वंडर चौराहा कन्ने आज तड़के अनजान गाड़ी री फेंट माए आ जावनु 3 जना री मौके ही मौत फेकी। ए लोग मजूरी कर पाछा घरां जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार दिया जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में हाईवे माथे बिना रुकियां गाड़ियां रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार सरू करण रो ऐलान। और प्रदेश रा आतुनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: मिनी वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। किसान भाई बहन अब सुन सकेंगे कार्यक्रम चौपाल।
2: गांव ग्वाड़ अर खेत खलियान री बात मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज। सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लोसा हाजिर है राजस्थानी गीतारो फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत हर सोमवार सिंजिया 7 बजिया आप सुन सको हो आपरो पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। कार्यक्रम सुनना सगला हेतालु श्रोताओं ने घणे मान सु गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

0: राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। आगलो कागद है गांव छापला सु मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवी रो। पवनपुरी बीकानेर सु भंवरलाल सोनगरा गीता रानी सोनगरा डॉक्टर सोनू दाइमा सरोज सत्यनारायण दाइमा अखिल मूलचंद सोनगरा सुनीता प्रथमराज हंसराज कृष्णा मुकेश सावित्री अंजलि अनुष्का लक्षिता अमीशा सोनगरा और अठेसुई आशीष जतीन और आना सगला घराला। साधुल शहर सु ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। गांव कुड़ी सु ठाकुर रूप सिंह कुंवर दिग्विजय सिंह मंजू कंवर सोडा मुमल कंवर और अन्नपूर्णा कंवर। अमरखेड़ महाराष्ट्र सु ओ कागद लिखियो है अभिजीत ग्वाणकर सरिता ग्वाणकर सिद्धांत प्रिंस और एकांश ग्वाणकर। और ईमेल माने कने आयो है अनारकली बाजार पंजाब सु लिखियो है सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष बेबी गव्या और जयपाली यादव। गांव धुंधाड़ा सु गणेश मेघवाल चंपा मेघवाल मधुबाला विवेक और आना सगड़ा साथी। आगलो कागद है गांव अरनियाली दोरी मीना बाड़मेर सु लिखन आला है फरसाराम खत्री भवानी शंकर खत्री पंकज खत्री रेखा निर्मा किरण सूरज शारदा भाग्यश्री हार्दिक खत्री और आनो सगड़ो खत्री परिवार। और कागद आयो है फाजिलका सु लिखियो है भूषण विशाल शालीन खेड़ा आरबी खेड़ा जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार।
1: गांव चाड़ी सु उत्तम चंद छाजेड़ राणूलाल छाजेड़ शांतिलाल छाजेड़ कमला देवी छाजेड़ और आनो सगड़ो परिवार।
2: गांव केलवाद सोजत सु ओ कागद लिखियो है सुरेश मेघवाल मंजू निशा और कृष्णा मेघवाल।
0: कागद आयो है मलोट कैंप पंजाब सु सतीश मिगलानी सीमा शाइना विशाल मिगलानी सुप्रिया अनमोल धर्मपाल महावीर और रमेश मिगलानी रो। तो साथ यहाँ सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। ओ ईमेल आयो है धन्ने की ढाणी तहसील सिंह धरीसू गणेश तरड चेतन गिलकी प्रमोद पारसी ममतेश मोहनलाल तरड़ और विकास तरड़ रो मलोट कैंप पंजाब सू माने कागज लिखियो है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया और आना सगला घर वाला। और ईमेल आयो है गांव बीकम कोर सू गौतम परिहार अरविंद परिहार सोहन परिहार आरती दुर्गा मंजू संगीता कुलदीप हंसपाल और ओम प्रकाश परिहार। और ईमेल आयो है गंगा सिंह का खेड़ा भीम सागर सुजानगढ़ सू लिखियो है मदन सिंह राठौड़ और आना सगड़ा घरवाड़ा गांव खारा बेरा भीमावता सुमाने कागज लिखे माना नियमित श्रोता है राजू राम सेन पद्मा सेन और प्रतिज्ञा सेन। आगलो कागज है गांव छापला सू मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवीरो। और ईमेल माने कनायो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सू लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ और आना सगड़ा साथी। आगलो ईमेल आयो है भोपालगढ़ सू घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी गांव खोखरा मारवाड़ जिला पाली सू कागज लिखे है सोहनदास वैष्णव लक्ष्मण दास युवराज खुशवंत भंवरदास ओम प्रकाश कालूदास विद्या देवी महिमा गुंजन और आना सगला घर आऊ फड़ोदी सू माने कागज लिखे बिकम चंद टाटिया संतोष टाटिया मनोज सुरेश खुशबू सपना धनी और भूमि मथानिया सू भगराज वर्मा बेबी वर्मा हनुमान मदन और गोविंद सुथार बिरे सू रतना राम उदेणिया मेहराम उदेणिया गुलाब राम और आनो सगलो परिवार बदवासिया सू पारसमल खटनवालिया अशोक खटनवालिया जयराम और आना सगला साथी खारड़ा भारत सिंह सू खरता राम माचरा भैरा राम रेखा राम माचरा उम्मीदा राम चेतन भोम सिंह और आना सगला साथी। तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना

राजस्थानी लोक गीता अर लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव पावना सर जैसलमेर सु जितेंद्र पंवार गुलाब पंवार तेज पाल नेपाल पंवार पारस पंवार गोविंद पंवार गौतम पंवार गांव मेलाना सु छेलाराम मेघवाल रविन्द्र देवेंद्र अनिता और फूली देवी मेघवाल रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजू है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सु गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जमर और आना साथी फलोदी सु ईमेल भेजू है सुभाष लेखावत और कागज माने कनायो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची पवार ओ ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु भेजन वाला है दिनेश सोडा रुद्राक्ष सोडा भव्यांश रमनदीप और राम किशोर ओ कागद आयो है इंदिरा कॉलोनी महा मंदिर सु श्याम डागर राजेंद्र गोपाल मरेठा रमेश सांखला जीतू बाडुलिया नंदू भाई वगलू राम गहलोत और आना घना सारा साथी पांचला खुर्द सु ईमेल भेजन वाला है दौला राम बेनीवाल खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर सु कमरा राम सतीश सारण सारो देवी और चंद्रिका गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्य सीता देवी मौर्य विजय प्रकाश गोमती माणकचंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्य खिंसर नागौर सु कल्याणमल प्रभु राम वंशीलाल हेमाराम शोभाराम मौर्य और आना सगला साथी तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

आबार आप सुनियो राजस्थानी लोक गीता रो फरमाइशी कार्यक्रम। अब कार्यक्रम रो बगत हो रियो है पूरो, तो आप रे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ। राम राम अर नमस्कार।

किसान भाई बहन अभी सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: फाटक उड़ाली उड़ी है डबलोबासी।
1: अरे फाटक तो उड़ाली उड़ी, खोल दो कूटियो लागोड़ो कूड़ है। मैं आवरा कमरी में आवरा ही था।
0: आया नवलोबा ओळख्या कि नहीं ओळख्या?
1: ओळख्या। ठीक
0: तो बताओ बच्चे,
1: हैं
0: बताओ कौन हूँ मैं?
1: है ना, मैं लगा की कोई थोड़ो पांतरो पंडूगो। भाई देखो कौन नाम है थारो, थोड़ो पांतरियो पड़गो मारे।
0: अरे मैं हूँ वसीम।
1: ओ ठीक ठीक ठीक।
0: अरे नवलोबा थोड़ा दिन नहीं आयो तो कही थे यूं।
1: अरे मारे देखो साहब, मैं कहूँ है वसीम भाई, क्या थोड़ो मैं कह के तावड़ो घणो पड़े नी। दे मुकड़ो हुणता आया जी बात तो मारी ही कि भाई हमें मारो नारियल हूक को।
0: अच्छा,
1: मगज काम ही तो करे को नहीं हूँ। घनी है जो कह नहीं के पानी रो पलियो है मारे, वो गमसियो है वो हूँ। चार पांच लड़ो कर भेड़ो कर भिजो माते में माते है जो कह नहीं के ढकू तो भाईड़ा मारे निजरी कम पड़न ढूगी ने हृदय कम पड़े बात है।
0: नवलो बा बात है
1: तेर घनी लागे
0: थानी तो होगी उम्र नब्बे आस पास पहुँच गया है। लेकिन आज कल जमाने में कई हो रही है कि जो मोटिया रहे वाने भी निजर कमजोर हो गए, वाने भी नारियल हुके जा रही है।
1: अरे हुके कह रहा मैं तो कहूँ देखो साहब, मैं तो कोई तावड़े में भूंता फिरे बाद है। तावड़े में कठी मत जाओ, हूं तो कोई काम काज है ठाडे ठाडे कर लो, जंजर के कर लो,
0: तावड़ो कर लो पड़े नोलोबा
1: पड़े तुम। देखो साहब कहीं है के वो तो कहे भाई देखो कुदरत रो खेल है,
0: खेल है
1: ही पड़े तो थे को ही पड़े, तावड़ो पड़े थे को तावड़ो पड़े। और बरसात हो जाए तो ऊंची अंगलिया कर डूब जाकर बरन डूब हो तो या तो को नहीं। देखो मिनक ने नी है चुका नी कुदरत जगह दियोड़ा है। बे दिन देखना पड़े,
0: देखना पड़े नवलोबा। कई जगह एडी है नवलोबा के जेटे सर्दी पड़े तो वोटे सर्दी च पड़े, कटे गर्मी पड़े तो गर्मी च पड़े पूरे साल।
1: अरे बहुत तो हमज गया साल पड़े। हमें उतरा दे बागरम जाओ तो उठे हली ठाट पड़े नहीं, हमें है जो ठाट को पड़े।
0: सही बात।
1: नहीं तो देखो हमें आजकल तो गेगिया नहीं खेंग बात बताऊ डूगा
0: डूगा सा
1: क्या भाई आपने किसी भी कटे कहूँ आवेला आंधी भी आवे पहला दिन तो कहो नहीं
0: कौन ही होना।
1: पर हमें कह के देखो आज ज्ञान विज्ञान बदियो
0: बदियो सानो।

0: बदियों जद कहीं है कई सीजा टाइम मत बताऊंगा।
1: आज ही मौसम विज्ञान रोज में अखबार पढ़ियो सुबह सुबह तो वह क्या होता है की जोधपुर आस पास इलाका में कई हो के भाई एक तो हीट वेव चालने शुरू हो जाए।
0: हाँ लू घनी पाजे लू लपर का तो पद कह दियो नहीं कह मैं एकदम हड़का हुनी होगी दाव डांडो आप रखी कह रही छी वोटे बैठे और पंख पंखे रू है भाई आप रखे ठाडी छी हम पर तो देखो के हमें रूकड़ा रे पत्ता कितना गया जो छी करियो घनी करे को आदो तावड़ो तो पड़ी है
1: पड़े है ना लो बस हम
0: मुटी बिरी चिड़ी है कह धोबो बिरियो कबूतर है ने छोटा मोटा जीवड़ा है तो बारो कई हो रिंद रोई रहा है बारी कह चुके हालत घनी खराब है
1: खराब है ना लोबा
0: मैंने कहना होचनो चीजे भाई चीन चून चुगो देनो है नहीं पानी जो है जो कोई कहन व्यवस्था बंदोबस्त करना है
1: करनो चाहिए ना लोबा
0: तो भाई कहनी के भाई आप जड़ो कह करो कह मेरो बर बिने तपिया भी है बसी भाई कह भाई देखो बड़ी कोई सा
1: बड़े को सही बात है ना लोबा
0: क्योंकि तपिया बिने तुम क्या तो देखो धरती अटू तपे नी जब जान समुन्द्र में बा गर्मी पुगे
1: पुगे
0: पुगे जो उठू पच बो पानी उखड़े उखड़े जो है जो पच बो भाप बने
1: पच बादल
0: पाच बो थे कठेरो पानी कटावे पाचो देखो कुदरत रो गिड़को थे अरब सागर है हिंद महासागर है बंगाली खाड़ी
1: मानसून
0: कोई नेड़ो तो है कोई
1: नेड़ो को नहीं है
0: बादलिया उड़ता उड़ता आवे पे अमृत भरे जुदा पानी कह नहीं की भाई हुनु निपजे
1: कुदरत चमत्कार है
0: नौलोड़ी
1: पड़े है बरसात हुआ है
0: बड़ापना है हाउस दीरा को मारे थैले में कौन लाया थे आज
1: अरे नवलो बा तो भूली गयो मैं थैले में मैं लाया हूँ पुदीनो ए नींबू ए शक्कर ए शरबत
0: जल जीरो को ले
1: जल जीरो भी लेने आयो
0: देखो बात आ है के जल जीरो है जो थोड़ा जी हो रो वे नींबू जो है ठीक है तो ये वहाँ तो कहीं है देखो के ऐसी लाया तो थोड़ो है जो की हिसाब किताब मन बता दो
1: हिसाब किताब
0: है जो पया रोकड़ा दे दूजो बढ़िया करियो साहब के मतीरा ने खरबूजा तरबूजा तो हूँ मंगा लिया पड़िया है मार ठाडा करियो राखू आवे जड़ भाई साणा मनवार करू ही हूँ
1: करनी पड़े सानो
0: पण ओ मैं थे ठीक करियो शरबती लिए या ने जो जल्दी लिए या और पौधी ने लिया है तो अलबत कह नींबू डर हाथ में ही घोट घोट पिया
1: हाँ
0: वाह तो बहुत बहुत दिन बाद है हमें यू है थे मुकड़ियों गीत सुनता नहीं
1: हाँ
0: मनी हुना होगा
1: हुना ना लो बाबू।

0: लगा दो उनका है क्या पंखा होगा गैसी होगा कई होगा पर मैं तो पहला बीज नाराज था
1: नवलो वो बात आ है कि भी जो विज्ञान की जगह बात करी तो विज्ञान के घनी तरक्की कर ली है इन चक्कर में कई है कि भाई जो पंखा आ गया एसी आ गई कूलर आ गया तो उन्हों कही है कि आप घर तो ठाडो हुए लेकिन दूसरा जो हानिकारक प्रभाव भी पड़े
0: हाँ वो कह देखो कूलर हवा खाचे
1: हाँ
0: वो गैसी है जो वो हवा फेंके
1: दूसरा काम हो विज्ञान करियो है नवलो बात जो भारत देश ने पूरी दुनिया में आप नाम रोशन करना रहो एक भारत ने मजबूत स्थिति में पहुंचाना काम भी विज्ञान करियो
0: हाँ करियो सर
1: आज रोजो को दिन विशेष है नवलोबा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है
0: ओ ठीक ठीक
1: और 11 मई रे अपन 1999 मनावता आ रहा हाँ 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना प्रधानमंत्री है भारत जब अपने राजस्थान रे पोखरण में जो को परमाणु परीक्षण करियो हो
0: हाँ बुद्ध पूर्णिमा
1: उन दिनों कही है की अगले साल अपने कही है की जो को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने लग गया
0: भाई आप है चीज हम बड़ो ढूंगा हो
1: बिल्कुल ढूंगा सा
0: कह तो कह मंगा होता हमें है जो आप पाची है जो मिलना बाकी विदेश में है चीज आज हम आप जावे
1: आ जावे सा
0: तो 80 भर में जिको कह नहीं भाई देखो जिको तरक्की हुई
1: हाँ हुई सर
0: तो वो ज्ञान हुई विज्ञान हुई मिनकर हिम्मत हुई सरकारी योजना हुई
1: हुई सर नौ
0: तो मुबारकबाद है आज दिन री हमें लोग कौन फोत हो या कौन है जिको कह नहीं जन्मिया है हमारी विगत बार कोई जानकारी बताओ
1: बताओ नौलोबा आज रे दिन जो जन्म जयंती है मृणालिनी सारा भाई जी ऐ जो अपने 11 मई 1918 केरलम में जन्मी है और भारतीय जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है
0: ओ ठीक ठीक आप कह नहीं के नाच नाच गानों करता
1: हाँ याने कही है कि हमारा नाम है प्रसिद्ध ही नवलोबा और भारत सरकार याने पचे पद्म भूषण तो पद्म श्री और कालिदास सम्मान भी याने सम्मानित
0: कह नहीं मलयालम में है जो कह नहीं गावता नाचता
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो को कटी कह नहीं आके देश में कटी कोई कलाकार है अदाकार है फनकार है वो तो देश रिवाज ही काम करे
1: करे नवलोबा
0: आज बाहर जान विदेश में कोई आपरी कला प्रदर्शन करे तो कोई तुकमो लाओ की लाओ तो पूरे देश पर नाम दे
1: हो ऐसा नवलोबा
0: तो आनी है जो कोटि कोटि कहूँ है कि नमन है
1: बिल्कुल ऐसा नवलोबा
0: और मन ले रहा फूल से रहूँ बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊँ एस एम श्री नागेश जी के बारे में जो को अपना एक भारतीय सैन्य अधिकारी है और अपने 1955 लेन 57 तक भारतीय सेना रा जो को है दूसरा चीफ जो को आर्मी स्टाफ के रूप में काम करियो
0: देश आजाद हो उन टाइम फौज कायम हुई हो उन टाइम कह नहीं भाई देखो बिरला मिन खा जद कह नीव मजबूत करी
1: करी साना
0: और करी जद आज अब हम कह नहीं के आके संसार में सिरे हाँ तो एड़ा बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके आने पर बात पर धोख देवा कोटि कोटि नमन करा और मन रेरा भूल सदा बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊं केवी के सुंदरम जी के बारे में जो को अपने 11 मई 1904 कुट्टूर चेन्नई में जन्मे हाँ जो को भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हा अपना और अपने स्वतंत्र भारत रा जो को पहला कानून सचिव और भारत रा दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहा
0: ओ हो ठीक ठीक देश आजाद हुयो और उन टाइम है जो कहनी मोटे ओदे माते काम करियो
1: करियो सा नवलो
0: तो कहनी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहला कानून मंत्री हा
1: हा सा नवलो
0: तो बारे हाथ है काम तो करियो ही
1: करियो सा नवलो
0: और पछ बोर्ड दूजा ही कराया
1: हाँ।
0: तो बिरजा काम करिया तो आने कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ावा ठीक है बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊं शक्ति सिन्हा जी के बारे में अभी अपने 1979 रे बैच रहा जो को आईएएस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी हा और अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साथ बहुत मोटा मोटा काम करिया
0: करिया सा करिया है जो को कह नहीं दिखना दे होते हुए आज देश की तरक्की में कह नहीं के अटल जी रे हाथ जो काम करियो
1: करिया सा नौ
0: तो मोटा ओदा हमल नाला मोटा काम करिया था नहीं कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊं आज जन्म जयंती है सादत हसन मंटो जी री है जो को अपने उर्दू और हिंदी रे जो को बहुत बड़ा प्रसिद्ध कहानीकार है और पटकथा लेखक भी है रेडियो माते हैं अपने दूरदर्शन माते है लिखता है जो को पटकथा लिखता है वाणी नाटक री
0: फटोफट लिखता
1: फटोफट लिखता है उर्दू कहानियां बहुत मोटी मोटी लिखी
0: ओहो
1: मोटो काम हो करिए नवलोबा सादत हसन जी के आप रे जो को समाज री जो को बुराइयां ही वर्ण माते है लिखियो जैसे वैश्यावृत्ति माते है लिखियो और दूसरी जी को सामाजिक बुराइयां ही उनमें तो खुल ने लिखियो है
0: हाँ देखो कि भाई कह क्या करूं करो चाहे भली दवा दारू करो तो वे करी है तो की कौन सा देखो कैडा बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके आने कोटी कोटी नमन है मंदिरा फूल चढ़ावा और अकीदतरा गुल पेश करा
1: करा सा नौलबा। एक और बतू नौलबा आज को

0: जयंती है सागर सरहदी जी री। जो को 11 मई 1933 एबटाबाद पाकिस्तान में जन्मे हाँ और अपने भारतीय हिंदी सिनेमा रा जो को दिग्गज पटकथा लेखक हा और अपने जो को भारतीय हिंदी सिनेमा में नाम कमायो जो को अपने कभी कभी चांदनी नूरी सिलसिला दीवाना और कौन और प्यार जड़ी जो को बेहतरीन फिल्म रही
1: नाम ही सागर जड़ो मोटो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सर्द मत रेवनाला तो मिन गारे कहनी के ज्ञान बदई हो
0: बदई
1: नलो बा तो आनी है जको किद तरह गुल पेश करा
0: करासा नलो
1: अर कोटी कोटी नमन करा ना मैं आरो कोई लिखियोड़ो कोई गीतड़ो कोई की कोई कथा
0: हुणो नलो बा यानी फिल्म रो गीत हुणो
1: हुणो सा हुणो

0: कहा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल है।
1: हाँ
0: अच्छी बात है। हाँ। मैंने कौ है मैंने करी है जो कह नहीं के बा जिंदगी कितनी है कोई कह कह कह इतना पीढ़ी उन कह हजारों सालों जो को मामलो है वो मैं एक घड़ों घड़ों मिनक है जो को हाँ ढी तरह सी नबे हो तो कोई बिरला ही
1: पूके बहुत बिरला पूके सा
0: वो आके कौन देखो कि मैं कह के भाई देखो आ बात तो है हजी लिखी और मारी दाय आई बड़े
1: मैं आपने बताऊ आज पुण्यतिथि है आबिदा सुल्तान जी री अपने 28 अगस्त 1913 में जन्मी ही और भोपाल रियासत री राजकुमारी ही है।
0: ओ हो ठीक ठीक ठीक है जो कह नहीं भाई मोटे घराने ही ही और उठे है जो कह नहीं कि भाई जन्मिया तो की इनकी चौका काम करिए या और चौका काम करिए दहेंगी आने है जो के याद करे ही है
1: करे ना वो बा
0: तो आने ही है जो की जितना गुल पेश करा कोटी कोटी नमन करा मंदिर फूल चढ़ावा
1: चढ़ावा ना वो बा
0: और यही बात चौकी होगी भले कोई है
1: भले की कोनी ना वो बा एक बात मैं कह भूल गया आपने नौ कि मैं जो को नींबू पुदीना तो लाई हुई हो हाथे हाथे परिंडा भी लेने आया हूँ।
0: ओहो वाह वाह
1: जगह जगह पेड़ा माते हैं रास्ता में
0: अरे,
1: तो आये हूँ
0: कर दिया थे तो कह दियो नहीं क्या मारो काम क्या घरे बैठा कर दिया हूँ मटकिया फोड़ फोड़ पतोलिया फोड़ फोड़ बे कर तो पर ये है जो को कह नहीं क्या अपने है जो रूकड़े
1: टेप दियो
0: पानी हूँ घड़ी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक सा ठीक बढ़िया करियो और हमें देखो मारे एक बढ़िया सौ को काम करो को नहीं
1: अर्जी सी होना तुम अभी।

0: वाह कह नहीं कि बसीम भाई हो कह नहीं कि मालिक थारे कह नहीं हैं कह के लीला लहर करे
1: हाँ नवलोग
0: और हमें थे है जी को देखो दावत कबूल कर लो
1: कर ली नवलोग
0: आंबा लाया जी को आंबा थोड़ा का मिलो लो कर ला और बढ़िया है जी को कह नहीं कि भाई रसड़ो

0: तैयार करा दो और हूं थोड़ी फेर लो माला थारी नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो।
1: हाँ नो लो
0: ठीक है
1: तो
0: पर जितने है जो कह नहीं रसोड़ तैयार होती हमें यूं देखो देखो आप भी हमें देखो थे के तारा ही खासा ऊंचा आएगा
1: हाँ,
0: दिन बदगो और प्रोग्राम टाइम ही वह पूरा तो भाई सैनों ले राम राम, राम।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सिमाड़ेरी कुंज, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। अब आप सुने अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। इस गीत को गाया है सनमपुरी और नीति मोहन ने। गीत है अन्विता दत्त का और संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, यह कार्यक्रम फिल्म संगीत और अगला गीत हमने लिया है फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रक्षाबंधन से। ये गीत को गाए हिमेश रेशमिया, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

ये अगला गीत फिल्म पागलपंती से। गायन स्वर है असीस कौर और जुबिन नौटियाल का। गीत है शबीर अहमद और तनिष्क बागची का। संगीत है तनिष्क बागची का।

श्रोताओं, यह है कार्यक्रम फिल्म संगीत और अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म हीरोपंती 2 से। पूजा तिवारी और जावेद अली के स्वर में ये अगला गीत। गीत के बोल लिखे हैं महबूब ने और संगीत से संवारा है AR रहमान ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म तुलसीदास जूनियर से। इस गीत को गाया है सचेत टंडन और उज्जवल कश्यप ने।

श्रोताओं, ये अगला गीत फिल्म थैंक गॉड से है। इस गीत को गाया है आनंद राज आनंद ने। गीतकार हैं रश्मि विराग और संगीत से संवारा है रोचक कोहली ने।

श्रोता फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म मिशन मजनू से। इस गीत को गाया है जुबिन नौटियाल ने, गीत लिखा है शाबिर अहमद ने और संगीत से संवारा है तनिष्क बागची ने।

0: श्रोता, हम आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9:30 और 10:30 पर भी। इस समय रात्रि के 8:45 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग

0: पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
4: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए

0: अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2,00,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा, जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर

0: चर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decade's biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja, followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebrations. In a social media post after the visit,

सजना। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब सुने अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पहला गीत फिल्म आप आए बाहर आई से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीतकार है आनंद बख्शी,

श्रोताओं, ये अगला दो गाना हमने लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म का नाम है छोटे नवाब, कलम है शैलेंद्र की और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, ये अगला गीत हमने लिया है फिल्म हरजाई से। इस गीत को लिखा है विट्ठल भाई पटेल ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। गायन स्वर है किशोर कुमार का।

श्रोता फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म आरजू से। गायन स्वर है मोहम्मद रफी का, कलम है हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, इन देवर के गीत को संवारा है संगीत से कल्याण जी आनंद जी ने। ये गीत हमने लिया है फिल्म पाप और पुण्य से। गीत को गाया है कंचन ने। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब अगला कार्यक्रम खेल पत्रिका। खेल जगत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: नमस्कार श्रोताओं, खेल जगत के आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे राष्ट्रीय कराटे चैंपियन अर्चना सिंह से गोपाल लखन की बातचीत।
1: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कराटे पर। कराटे एक ऐसा खेल है जिससे न केवल हम अपने क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं अपितु हम अपने स्वयं की रक्षा भी कर सकते हैं यदि कोई मुसीबत हमारे पर आन पड़े। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ है कराटे की नेशनल चैंपियन अर्चना सिंह। अर्चना सिंह जी कराटे के अलावा बैडमिंटन की एक अच्छी प्लेयर हैं, एक रेफरी एम्पायरिंग का काम करती हैं और भी बहुत सारे खेलों में इनका दखल है। अर्चना जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार सर।
1: अर्चना जी, कराटे पर बात करते हैं, किस तरह से का खेल है कराटे और इसको किस तरह से पहचाना जाता है?
2: कराटे को सबसे पहले आत्मरक्षा के तौर पर पहचाना जाता है कि हम इसमें अपनी रक्षा कर सकें और दूसरों की रक्षा कर सकें। लेकिन साथ ही यह खेल इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा चुका है। अलग अलग संस्थाएं इनको करवा रही हैं, WKF की तरफ से होता है, उसके बाद एशियन चैंपियनशिप के तौर पे होता है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, राज्य प्रतियोगिताएं, साथ ही साथ लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
1: कराटे के बारे में कहा जाता है कि काफी खतरनाक खेल है और इसमें चोटिल होने की काफी संभावनाएं हैं खिलाड़ियों की।
2: चोटिल होने की संभावनाएं अब इस समय के दौर में तो बहुत कम हो गई हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं। पहले काफी आसे 10-20 साल पहले की बात करूं तो चोटिल होने की संभावनाएं ज्यादा रहती थी। आजकल एक खेल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सेफ्टी तरीके से हम लोग इसको खिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चों को लगता है मारपीट का गेम है। लेकिन मारपीट का गेम नहीं है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को, आत्मविश्वास को बढ़ाने का खेल है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास के साथ उन परिस्थितियों का सामना कर सके, वो खेल है ये।
1: जी, भारत में खेल परिदृश्य काफी बदला है और अब काफी तेजी से युवा और यहाँ तक के छोटे बच्चे भी किसी न किसी खेल में आ रहे हैं। कराटे में बच्चों को आना चाहिए, क्यों आना चाहिए सबसे पहला तो इसमें ये पूछेंगे, और किस उम्र में आना ठीक रहता है कि जहां से कराटे की शुरुआत की जा सके?
2: सर, क्यों आना चाहिए, पहले भी मैंने कहा है हर बार, खुद को बचाने के लिए। विपरीत परिस्थितियों में हम अपने मन को एकाग्र करके उन परिस्थितियों से यदि निकाल सकें खुद को, इसके लिए आना चाहिए। जिसमें कराटे सीखने के बाद हम में एक हिम्मत आ जाती है और हम उन परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। साथ ही साथ अब उम्र की बात करें तो छोटे बच्चे मार पिटाई करते हैं, उसको उनके एक ऊर्जा लेवल को सही दिशा में देने के लिए हमें चाहिए कि हम किस तरीके से उनको करें। आजकल 2-3 साल के बच्चे बहुत ज्यादा आक्रामक होने लगे हैं और यह पारिवारिक परिवेश है जिसकी वजह से यह सब चल रहा है। तो हम लोग, जो मैं लेती हूं बच्चों को इसको खेल में, कम से कम 3-4 साल की उम्र से बच्चे खुद को अनुशासित करना सीख जाते हैं और वहां से हम इनको आगे बढ़ाते हुए।
1: जी, यानी खेल कराटे एक ऐसा खेल है जिसमें आपका जीवन अनुशासित होता है, डिसिप्लिन में रहना सीखता है। तो कराटे किसी और चीज के लिए बाद में जाना जाएगा, सबसे पहले डिसिप्लिन के लिए जाना जाएगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को कराटे सिखाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वो देखते हैं कि प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्कीम में क्या है, कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट देगा आपको, क्या इस खेल में हम कोई मेडल पाके या कोई चैंपियनशिप में जीत हासिल करके हम सरकार से किसी नौकरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो कराटे क्या इस मायने में बहुत अच्छा गेम माना

0: जाएगा।
1: हाँ सर, इस मायने में अच्छा गेम तो है। अलग अलग राज्यों में देश के इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अगर मैं बेबाक तौर पे कहूँ तो राजस्थान में हम थोड़ा सा काम कम देख रहे हैं, क्योंकि मैं राजस्थान से खुद को जोड़ के रखती हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ। लेकिन अलग राज्यों की बात करें तो नौकरी भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है और प्रसिद्धि तो मिल ही रही है।
0: जी, कराटे के साथ एक शब्द और अक्सर हम सुनने में आते हैं, जूडो। और जूडो कराटे मिलके एक कंप्लीट जो है सीन उभर कर आता है कि जूडो कराटे एक ही खेल है। जूडो और कराटे दोनों अलग अलग हैं
1: बिल्कुल,
0: या
1: दोनों
0: वास्तव?
1: अलग अलग खेल हैं।
0: जी
1: मार्शल आर्ट जिसे हम कहते हैं, एक विधा, उसके अलग अलग पार्ट हैं ये। जिसे जूडो एक अलग बिल्कुल तकनीक है, जिसमें पूरा ग्रैप करके हम लोग तकनीकों के माध्यम से गेम खेलते हैं, जबकि कराटे एक बिल्कुल अलग तकनीक है।
0: जब भी बच्चा कोचिंग के लिए जाता है कराटे की क्लास में, और अभिभावक भी ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा, आज मैंने भर्ती कराया और 2 साल 3 साल में वो रिजल्ट देना शुरू कर दे, तो कितनी जल्दी हम सीख जाते हैं कराटे को और कितनी जल्दी हम रिंग में उतर कर अपने प्रतिद्वंद्वी को धूल चटा
1: सर,
0: सकते हैं?
1: ये तो हमारे बच्चे पे खुद पे निर्भर करता है, साथ ही साथ उसके प्रशिक्षक पे। प्रशिक्षक यदि अच्छा है तो कम से कम 3 से 5 महीने में शुरुआती टेक्निक्स उसे सिखा के वो रिंग में उतार सकते हैं खेल के तौर पे। लेकिन बाकी अगर मैं कहूं तो टेक्निक सीखते सीखते तो सारी उम्र लग जाती है। यह बेल्ट के तौर पे है, 3-3, 6-6 महीने के कोर्सेज होते हैं। उसमें बच्चे को पारितोषिक तौर पे एक बेल्ट दी जाती है, प्रारंभिक स्तर पर व्हाइट बेल्ट से शुरुआत की जाती
0: जब
1: है।
0: स्टार्ट होता
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल,
0: और ब्लैक बेल्ट धारी को कहते हैं वो पारंगत हो गया, ये
1: हाँ
0: सच है?
1: सच तो है। आजकल मैं खेल की तकनीकियों को देखते हुए कह सकती हूँ, एक प्रशिक्षक अपने तौर पे 1.5 से 2 साल में ब्लैक बेल्ट दिला देता है।
0: जी
1: लेकिन सच कहूं तो मैं आज भी ब्लैक बेल्ट हूं और आज भी सीख रही हूं। तो इसमें सीखने के लिए कहीं कोई भी पूर्ण विराम नहीं है,
0: यानी
1: आपको सीखना
0: लगातार
1: तो पड़ेगा ही।
0: लगातार सीखना पड़ता
1: बिल्कुल
0: है। इक्विपमेंट की बात की थी कि अब उतना खतरनाक नहीं है या चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती है जब
1: जी,
0: हम इसके सुरक्षा उपकरणों के साथ में खेलते
1: हाँ
0: हैं। कितने तरह के इक्विपमेंट कराटे में काम आते हैं और क्या वो कितने कॉस्टली हैं कि हर कोई अफोर्ड कर सके?
1: सर, अफोर्ड करने की तो बात है, हम आजकल सारे माँ बाप ब्रांडेड पे जाने लगती हैं। लेकिन अगर हम बेसिकली तौर पे देखा जाए तो बेसिक तौर पे नॉमिनल चार्जेस पे इक्विपमेंट्स आते हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें हाथ के ग्लव्स, पैरों के लिए सिन गार्ड, हेड गार्ड, माउथ गार्ड, मुंह से बचने के लिए,
0: जी
1: मुंह में लगाते हैं उसको माउथ गार्ड कहते हैं। तो ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन मेन मैं कहूंगी बॉयज के लिए ग्रोइन गार्ड है और गर्ल्स के लिए चेस्ट गार्ड, तो उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये हम लोग मोस्ट ऑफ ऑल 6 से 8 साल के बाद से शुरू कर देते हैं।
0: आमतौर पर यह माना जाता है कि जितनी अच्छी बच्ची कैचिंग पावर होती है उतना जल्दी सीखता है। फिर भी कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन है कि आप साल में, 2 साल में 6 साल में कोई कोर्स इतने समय में हम सीख सकते हैं कराटे को?
1: हाँ सर, ये तो है। अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को 6 से 8 महीने ही डालना चाह रहे हैं तो वो बेसिक करके निकल सकता है। लेकिन उसे अगर हमें खेल में डालना है तो फिर लगातार अभ्यास की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो पारंगत नहीं होंगे। हमने कुछ पहली टेक्निक सीखी है, हमने उसकी कोई तकनीक ने वापस हमने काम करना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल किक की बात करें या पंच की बात करें या ब्लॉक की बात करें, इन तीनों को मिला के ही कराटे बनता है।
0: जी
1: तो अगर हमने बात ही वहां से शुरू करी है कि हमने ब्लॉक करने सीख लिए और छूट गया, उसके बाद नहीं हो पाएगा, फिर वो बच्चा आगे वाली टेक्निक सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए एक बेसिक, कम से कम 1 से 2 साल का समय तो हर माँ बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए। और इस दौरान प्रशिक्षक अमूमन तौर पे कम से कम 2-4 प्रतियोगिताएं तो बच्चों को खिलाते ही हैं,
0: जी
1: तो बच्चे की एक झिझक भी निकलती है खेल के तौर पर, स्पर्धात्मक रूप से कहूं तो।
0: हर एक खेल, जितने भी गेम हम खेलते हैं उसमें शारीरिक दमखम एक महत्वपूर्ण है और हर एक खेल में थोड़ा थोड़ा दिमाग भी चलता है।
1: बिल्कुल
0: तो कराटे को आप मतलब दिमाग का खेल मानेंगी या शारीरिक दमखम को?
1: नहीं सर, कराटे जो है, मैं आपको बता दूं, मन और शरीर के संतुलन का खेल है।

0: अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है और आप सिर्फ एनर्जी लगा रहे हैं सामने वाले को, तो आपको एक गेम कुमिते बोलते हैं जिसको हम,
1: जी
0: दो प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं उसमें अगर बात करेंगे और आपने सिर्फ दम लगाया है, तो फिर आपको वहां पे रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी, आपको वहां पे अंपायर जो खेल खिलाता है उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको वहां पे हर बार वार्निंग मिलेंगी, चेतावनियां मिलती हैं, क्योंकि हम जब खेल खेलते हैं तो ये एक सॉफ्ट टारगेट गेम है, हमें फुल टारगेट नहीं कहते। जैसे मैं आपको एक बार बीच में बता दूं, एक और गेम को मैं बीच में लेकर आई, ताइक्वांडो। ताइक्वांडो फुल कॉन्टेक्ट गेम है जिसमें हम पूरी तरीके से हिट करते हैं और दूसरे आपके अपोनेंट को बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है।
1: जी
0: सुरक्षा गार्ड उसमें ज्यादा है क्योंकि उसमें किक्स का प्रयोग किया जाता है।
1: जी हाँ
0: हमारे कराते में किक पंच दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पे अगर हम इसको सॉफ्ट टारगेट टच एंड बैक करते हैं, ये टेक्निक सिंपल मैं हिंदी इंग्लिश बोलूं तो टच एंड बैक ही बोलते हैं,
1: जी
0: स्पर्श करना है, हिट नहीं करना है, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस रहता है, अगर उसने हिट किया है तो फिर उसको चेतावनी मिलती है।
1: ये जो कराते जब रिंग में खेला जाता है तो ड्यूरेशन वाइज इसकी समय निश्चित है
0: हाँ
1: या
0: सर,
1: कुछ जो जिसको कहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप कितने चरण में ये पूरा हो जाएगा?
0: सर इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो काता जिसमें हमें सिर्फ टेक्निक यूज करनी होती है, एक बॉन्डेड 4 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट, 6 मिनट तक हमें पूरा कंप्लीट करना होता है। उसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति उस सारी टेक्निक को जो उसने सीखी है, पर्टिकुलर उनके नाम है अलग अलग,
1: जी
0: उसको प्रदर्शित करेगा और जज उसके तरीके पे, उसके ड्रेसअप पे, सब पे नंबर देंगे। साथ ही साथ कुमिते जिसे कहते हैं फाइट, दो प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं, उसमें एज के अकॉर्डिंग जो
1: जी
0: बच्चे की एज है उसके हिसाब से टाइम सेट होता है। जैसे सीनियर्स में 3 मिनट का गेम होता है, जूनियर्स में अप टू 1.5 से 2 मिनट का गेम होता है, गर्ल्स में 2 मिनट का गेम होता है, सीनियर्स में भी इस तरीके से, छोटे बच्चों में 1 मिनट, इस तरीके से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दी होती है।
1: आप काफी समय से बच्चों को सिखा भी रही हैं,
0: जी
1: कराते और जूडो और पूरी एकेडमी चलाती हैं, तो किस तरह का अनुभव है इस गेम को लेकर? कितना उत्साह है बच्चों में, खासतौर से लड़कियों में और उनके अभिभावकों में भी?
0: सर, अब मेरे पास बहुत सारे अभिभावक आते रहे हैं और उनका कहना है मैम हमारी बच्ची झिझकती बहुत है, बोल नहीं पाती है, तो मेरा उनसे कहना है, मैंने कहा आप यहां छोड़िए उसको, धीरे धीरे उसमें जब अपनी विश्वास आएगा खुद में तो ये बच्ची बोलना भी सीखेगी और विपरीत परिस्थिति में सिखाएगी भी दूसरों को कि मुझे नहीं टच करना है या मुझे जो भी परिस्थिति है, मैं नहीं
1: जी
0: कह
1: जी
0: सकती किस तरीके की, कभी कभी होता है दोस्त ही अपने आप बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वहां भी बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं सच कहूं तो मेरे काफी बच्चे ऐसे हैं जो छोटे छोटे खेल के जाते थे और अभी वापस कहीं मिलते हैं, अरे मैम आपने हमें कराते सिखाया था, तो बहुत खुशी होती है कि वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज ए टीचर।
1: यानी जब स्टूडेंट सफलता प्राप्त करके वापस आते हैं तो निश्चित तौर पर गुरु को गर्व होना स्वाभाविक सा
0: बिल्कुल
1: लगता है। कराते गेम में जो रिस्क की बात है, और कई बार लड़कियां सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाती हैं कि इसमें रिस्क बहुत है, चोट लग जाएगी, तो रिस्क कितना हो सकता है, कितना कम किया जा सकता है?
0: सर, कम करने की बात तो जो स्पोर्ट्स वे पे है रिस्क तो कम ही है,
1: जी
0: लेकिन पेरेंट्स के दिमाग से रिस्क निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उन्हें लगता है कि अरे हम कैसे करेंगे, बच्ची को चोट लग जाएगी। जो मैंने अभी सेफ्टी गार्ड की आपको बात की थी, वो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, और पर्टिकुलर जब गेम खेलने की बात आती है, प्रतियोगिताओं की खास तौर से, वहां पे उनका यूज होता है। अब आपको कहूं मैं, अचानक कोई सड़क चलते ये हो रहा है कि किसी लड़की को छेड़ा, तो वहां तो आपको चोट लगेगी भी, और मेरा मानना है आप अगर जितनी खाती हैं, लड़कियों की बात कर रही हूं पर्टिकुलर, उससे दुगनी मारनी चाहिए
1: पावर से
0: पावर से, मैं वही सिखाती हूं
1: यानी
0: अभी।
1: लड़कियों की झिझक दूर करने में ये एक
0: बिल्कुल
1: महत्वपूर्ण पॉइंट है।
0: होता क्या है सर, मैंने अब तक देखा मेरी कुछ बच्चियां बोलती नहीं थी, अरे मैम चोट लग जाएगी, मैंने कहा चलो आप मुझे मारो, जब मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ मैं बहुत अलग तरीके से करवाती हूँ, कम ऑन हिट मी, नहीं मैम आपके लग जाएगी, मैंने कहा अगर आप मेरे नहीं मारोगी तो फिर मैं आपके मारूंगी, नाउ गेट रेडी, देन दे स्टार्टेड। ग्रेजुअली थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम लोग लड़कियों को हमेशा ही नहीं, इसको

0: मारना, उसको ये नहीं करना, जोर से नहीं बोलना, यही सब सिखाते हैं। तो उसमें मानसिक तौर पे उनको चेंज लाने में उनमें बहुत वक्त लग जाता है।
1: तो जब हमने शुरुआत में बात की थी कि जो हम कराते में आते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन सीखते
0: जी
1: हैं एंड देन फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जब ये दोनों चीजें हमारे पास होती है तो हमारे पास जो सेफ्टी आत्मरक्षा के लिए एक मजबूत हमारे विचार तंत्र मजबूत हो जाता है।
0: यस
1: आप किस तरह से डिफाइन करेंगी कि वास्तव में लड़कियों के लिए और सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खेल है और इसको हमें सीखना चाहिए?
0: मैं आपको बता दूं, मेरी कुछ बच्चियां हैं जो आई बहुत झिझकती थी। उदाहरण से दूंगी आपको, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं, मुझे नहीं आएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। एक दिन, 2 दिन, धीरे धीरे मैंने उन्हें ग्रेजुअली बोला, और जिस दिन उन्होंने बहुत अच्छा, मैंने पंच से शुरुआत करती हूं हमेशा कि बेटा अगर कोई मारेगा तो आप रोकोगी कैसे। घर पे कभी कभी हो जाता है, प्यार में भी या गुस्से में भी, माता पिता आजकल नहीं उठाते, मगर हमारे जमाने में तो शुरुआत ही थप्पड़ों से हो जाती थी, अगर कुछ गलती किया तो थप्पड़। तो तुम जिस तरीके से हाथ उठाती हो, अगर तुमने हाथ उठाया है तो 101% तुम्हारे अंदर ये तो है कि तुम कर लोगी। वहां से बच्चे जब ये बोलते हैं, मैम आज जब हमने आए यहां पे तो हम अपनी पढ़ाई करके आए हैं, हम आज हमने अपने घर के काम भी किए। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को, अपने माँ बाप की मदद करो।
1: जी
0: तो वो जब सब करके निकलते हैं तो एक सिंपल शब्द में बोलते हैं, मैम आजकल ना हम अपने सही सारे काम बहुत तरीके से करते हैं। और उसके बाद जब ये सुन के मुझे जो लगता है, और पेरेंट्स बाद में जो फीडबैक देते हैं, बोले मैम हमारा बच्चा आजकल बहुत अच्छे से सारे काम करता है, हमारी
1: अच्छा
0: बात बहुत ध्यान से सुनता है, और अगर हमने बोला पढ़ाई कर लो तो वो पढ़ाई भी करता है। क्यों? क्योंकि उसको यहां आने का सबसे पहले लगता है, मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मेरे क्लास में सुनूंगी।
1: जी
0: तो मुद्दा ये है कि हमें उसको, हमारा जो प्रशिक्षक है, कोई भी मैं हूं या कोई भी हो,
1: कोई भी हो,
0: वो उसको किस तरीके से प्रशिक्षित करता है।
1: खेलों की दुनिया में आजकल एक और चीज हम देखने में आते हैं, बल्कि एक समस्या के रूप में, कि कई बच्चे जब एंट्री लेते हैं किसी भी गेम में और फिर वो थोड़ा आधा सीखते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, या उनका मन के यार मैं गलत खेल में आ गया, मुझे दूसरा एडॉप्ट करना था, ऐसे बच्चे आपके पास में भी आते होंगे। किस तरह से आप उनको समझाते हैं कि इस गेम को रेगुलर करना कितना जरूरी है?
0: बहुत आसान है मेरे लिए, जैसा आपको पता ही है मैं एक टीचर भी हूं, तो मैं उनको एक ही एग्जाम्पल से देती हूँ। मैंने, बेटा आपने अभी एग्जाम क्लास में एंट्री की है तो कम से कम 1 साल तो लगेगा ना आपको रिजल्ट आने में,
1: जी
0: जैसे तुम स्कूल में जाते हो और 1 साल लगता है तुम्हें रिजल्ट आने में कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा, सफल होगे या असफल होगे, और बीच में छोड़ दोगे फिर तो ना तो इधर के रहोगे ना उधर के। तो धीरे धीरे बच्चों को समझ में आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे खेद व्यक्त करूंगी, इसमें जो आपने एक प्रश्न किया है मुझसे, यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे बच्चे से ज्यादा मुझे उनके पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है। अरे मैम ये तो नहीं कर रहा, 2 दिन आए। देखिए क्या होता है, कोई भी खेल शारीरिक परिश्रम मांगता है।
1: जी
0: आजकल के परिवेश में बच्चों पे शारीरिक परिश्रम करने की आदत नहीं है, ना ही उनके अभिभावकों को है। मैं बहुत खुल के विचार रख रही हूं अपने इस समय,
1: जी
0: क्योंकि शायद जो सुने माँ बाप वो समझ पाए, शारीरिक परिश्रम बहुत जरूरी है अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो।
1: यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यदि आप किसी भी गेम में हैं और स्पेशली यदि कराते में हैं, कराटे में हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इसको रेगुलराइज रखना चाहिए,
0: हाँ
1: और जितना समय लगता है एक क्लास को पास करने में उतना समय इस
0: उतना
1: गेम को
0: समय तो देना चाहिए।
1: देना ही चाहिए। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से हम ये समझ पाए कि कराटे एक महत्वपूर्ण खेल है अपने अनुशासन के लिए, अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए और स्वयं को मजबूती से लोगों के सामने रखने के लिए।
0: बिल्कुल
1: आज इस संबंध में हमने बातचीत की कराटे चैंपियन, नेशनल कराटे चैंपियन अर्चना सिंह जी से। मैडम, आज आप स्टूडियो में आई आकाशवाणी जयपुर के और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सभी श्रोताओं को, और धन्यवाद सर आपको भी।
1: आत्मरक्षा के लिए कराते, श्रोताओं अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे, जानकारी दे रही थी अर्चना सिंह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय कराटे चैंपियन अर्चना सिंह से गोपाल लखन की बातचीत। अब हमें आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, इसी दिन इसी समय। नमस्कार।

0: यह था कार्यक्रम खेल जगत, इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। अब सुने अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओ, ये गीत आपने सुना फिल्म भीगी पलके से। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सपन सुहाने सपेरा से। ये दो गाना फिल्म सपेरा से सुमन कल्यारपुर और मन्ना दे के स्वर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम है फिल्म संगीत। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से संवारा है सलील चौधरी ने। गायन स्वर है मन्ना दे और साथियों का। फिल्म का नाम है सपन सुहाना।

0: मेरी ये हलचल, जिंदगी है ये ख्वाब नहीं है प्यारे, आग भी है बस राग नहीं है प्यारे, जिंदगी है ये ख्वाब नहीं है प्यारे, आग कहीं कड़ी धूप है कहीं छाया,
1: कहीं कड़ी धूप है कहीं छाया,
0: रस्ते ये

0: सारी रात है तेरे आगे,
1: अभी सारी रात है तेरे आगे।
0: ये तो इब्तिदा है भोले भाले परवाने।
2: श्रोताओ, हमने अगला गीत लिया फिल्म रुस्तम शोहराब से। इस गीत को गाया है सुरैया ने, गीत लिखा है कमर जलालाबादी ने और संगीत से सवारा है सजत हुसैन ने।

श्रोताओं, अगला गीत फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हमने लिया है लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जाल से। इस गीत को गाया है गीता रॉय ने, गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीतकार एस डी बर्मन।

श्रोताओ, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का ही आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म नूर महल से। इस गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर ने। गीत लिखा है सबा अफगानी ने और संगीत दिया है जानी बाबू गव्वाल ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुने पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम

0: संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यहीं संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे प्रातःकालीन सभा में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।